ये था साधना सरगम का गाया दलाल फिल्म का गीत। और अब कार्यक्रम का आखिरी गाना आपको सुनवाते हैं, सात रंग के सपने, इस फिल्म से बाबुल सुप्रियो।

ये था आज के फिल्म संगीत कार्यक्रम का आखिरी गाना आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। दो बजने वाले हैं, कुछ ही पलों के बाद आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। इसके बाद 2:15 पर हिंदी में समाचार आप सुनेंगे। समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्रों से रिले किए जा रहे हैं।

मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी। साथियों, मैं आज आपसे एक आग्रह भी करना चाहता हूं, करूं? हां कहने में क्या जाता है। हमने कुछ समय पहले हमारी इंडियन डायस्पोरा के बच्चों के लिए एक नया प्रयोग किया है। हमारे बच्चे भारत को समझें और भारत की विविधता की बात दुनिया

0: निर्माण कर रहा है। परिवहन क्षेत्र में तकनीकी और नवाचार आधारित सहयोग मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा 2026 को अपनाया गया। बावी तूफान के कारण जापान और ताइवान में उड़ानें रद्द और स्कूल बंद। भारत और इंग्लैंड के बीच पांचवा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज शाम साउथहैम्पटन में खेला जाएगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से और अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य है। ऑकलैंड में दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के प्रभारी सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि आगामी 4 वर्षों में साझा रूप से काम करने के लिए भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी 2030 तक की रूपरेखा को भी मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना है।
1: दोनों देशों के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय ये दर्शाता है कि हम अपने रिश्तों के सभी क्षेत्रों में संबंध मजबूत कर रहे हैं, विशेष रूप से रक्षा तथा सुरक्षा के क्षेत्र में और राजनीतिक स्तर पर।
0: इससे पहले दोनों नेताओं के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता के बाद रक्षा, पशुपालन और डेयरी, पर्यटन, खेल तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने सामरिक साझेदारी स्थापित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जो भविष्य के सहयोग को नई दिशा देगा।
2: आज हमने इंडो पैसिफिक में मैरिटाइम कोऑपरेशन के लिए एक फ्रेमवर्क पर सहमति बनाई है। बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज, लॉजिस्टिक सपोर्ट और हाइड्रोग्राफी में सहयोग से हमारा आपसी तालमेल बढ़ेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करने के लिए भी सहमत हुए हैं।
2: वैश्विक मंच पर भी भारत और न्यूजीलैंड भरोसेमंद साझेदार और करीबी मित्र है। हमारा मानना है कि वर्तमान समय की चुनौतियों का सामना करने के लिए यूएन सहित अन्य वैश्विक संस्थानों में रिफॉर्म आवश्यक है। आतंकवाद के विषय पर कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ाने के लिए आज हमने ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप का गठन किया है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस वर्ष दोनों देश खेल संबंधों की 100वीं वर्षगांठ मना रहे हैं।
2: 100 साल पहले मेजर ध्यानचंद के नेतृत्व में हॉकी टीम ने यहां आकर जो इतिहास रचा था वह हमारी खेल साझेदारी को आज भी प्रेरित कर रहा है। इस उपलक्ष्य पर हम दोनों देशों में कई स्पोर्ट्स इवेंट्स आयोजित कर रहे हैं। क्रिकेट के साथ साथ अन्य खेलों में भी सहयोग बढ़ाने के लिए हमने स्पोर्ट्स ज्वाइंट एक्शन प्लान बनाया है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच मजबूत होते संबंधों का महत्वपूर्ण आधार है। ऑकलैंड में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के संबंध साझा विरासत, स्थायी मित्रता, समान लोकतांत्रिक मूल्यों और उज्ज्वल भविष्य के साझा संकल्प पर आधारित हैं।
2: हमने न्यूजीलैंड से भी बहुत कुछ सीखा है और अब भी सीख रहे हैं। न्यूजीलैंड दुनिया का वो देश है जिसने सबसे पहले महिलाओं को वोटिंग का राइट दिया था। भारत भी आज विमेन लेड डेवलपमेंट के मंत्र के साथ महिलाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोल रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि ऑकलैंड से वेलिंगटन और क्राइस्ट चर्च से क्वींसटाउन तक भारतीय समुदाय ने दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
2: न्यूजीलैंड वो जगह है जहां निखिल रविशंकर एयर न्यूजीलैंड के सीईओ बन सकते हैं, जहां आनंद सत्यानंद गवर्नर जनरल बन सकते हैं, जहां क्रिकेट टीम में रचिन रविंद्र, कहीं बॉम्बे हिल्स है, कहीं कोरोमंडल है, ऐसे कितने ही नाम है। यहां रहते रहते आप भी पूरे के पूरे

0: कीवी हो गए हैं।
1: इस अवसर पर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि मुक्त व्यापार समझौते से न्यूजीलैंड के निर्यातकों को भारत के विशाल बाजार तक पहुंच मिलेगी और न्यूजीलैंड में भारतीय कारोबार के लिए नए अवसर खुलेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस महेंद्र गिरी को नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया। परियोजना 17 एकाई ये युद्धपोत भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति और स्वदेशी रक्षा क्षमता का परिचायक है। श्री सिंह ने कहा कि भारत पारंपरिक रक्षा क्षमताओं और उन्नत प्रौद्योगिकियों को सुदृढ़ करके एक मजबूत आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। श्री सिंह ने कहा कि आईएनएस महेंद्र गिरी में 75% से अधिक स्वदेशी घटकों का इस्तेमाल हुआ है। उन्होंने कहा कि ये युद्धपोत अत्याधुनिक स्वदेशी हथियारों से सुसज्जित है। इससे हिंद महासागर में भारत की समुद्री ताकत और बढ़ेगी।
2: आईएनएस महेंद्र गिरी में मल्टी फंक्शन राडार के साथ लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का कॉम्बिनेशन है, जो आकाश से आने वाले किसी भी खतरे को दूर से ही पहचान कर नष्ट कर सकते हैं। और इसमें इंडिजिनस रॉकेट लॉन्चर है, टॉरपीडो लॉन्चर्स है, एक इंटीग्रेटेड एंटी सबमरीन डिफेंस सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट है और क्लोज इन वेपन सिस्टम भी है। ये तमाम चीजें आईएनएस महेंद्र गिरी को महेंद्र गिरी पर्वत के समान ही अभेद और मजबूत बनाती हैं।
1: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज महाराष्ट्र के नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने बताया कि बैठक में वैकल्पिक जैव ईंधन तथा प्रदूषण मुक्त प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सड़क, रेल, विमानन और जल परिवहन को कार्बन न्यूट्रल बनाने के उपायों पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि सहयोग को और मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा 2026 अपनाई गई है। बैठक में ब्राजील, चीन, मिश्र, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, इथियोपिया और संयुक्त अरब अमीरात के परिवहन मंत्रियों ने अपने विचार साझा किए। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत दो दिन की ये बैठक आज से नागपुर में शुरू हुई। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का शुभारंभ किया। श्री शाह ने युवाओं से पुस्तकालयों में जाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पुस्तकें व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। श्री शाह ने कहा कि महान क्रांतिकारी और विचारक जयप्रकाश नारायण ने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
3: किशोरों ने और युवाओं ने अपने रुचि के विषय छान लेने चाहिए और सुने सुनाए ज्ञान की बगर हमारे रुचि के विषय में जिन्होंने पूरा जीवन खपा दिया है, जिन्होंने पूरा जीवन लगा दिया है, ऐसे लोगों ने जो अपने अनुभव, अपने विचार, अपना चिंतन और चिंतन की व्यवहारिता जो पुस्तकों में अंकित की है उसको पढ़ना चाहिए। ये बहुत बड़ा मौका है दिल्ली के युवाओं के लिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट 32,000 पुस्तक और 1 करोड़ ई बुक का एक्सेस है।
1: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि हैदराबाद को प्रमुख हाई स्पीड रेल हब के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रस्तावित बुलेट ट्रेन कॉरिडोर हैदराबाद को पुणे, चेन्नई और बेंगलुरु से जोड़ेगा। हैदराबाद में श्री वैष्णव ने कहा कि हाई स्पीड रेल नेटवर्क से यात्रा में लगने वाले समय में कमी आएगी और दक्षिण भारत में रेल संपर्क मजबूत होगा। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वैच्छिक परिवार नियोजन, जागरूक निर्णय और स्वस्थ परिवार समावेशी तथा सतत विकास की मजबूत नींव है। विश्व जनसंख्या दिवस पर उन्होंने कहा कि इस वर्ष का विषय मां और बच्चे के कल्याण के लिए गर्भधारण के बीच स्वस्थ अंतराल और नियोजित पितृत्व है। उन्होंने कहा कि अभियान का नारा जब बच्चों में हो सही अंतराल, परिवार बने स्वस्थ और खुशहाल, गुणवत्तापूर्ण परिवार नियोजन सेवाओं तथा जागरूक प्रजनन संबंधी निर्णयों के महत्व को दर्शाता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। जापान के दक्षिणी द्वीपों में

0: आज तूफान बावी के टकराने की खबर है। इस दौरान द्वीपों में तेज हवाएं चली और मूसलाधार बारिश हुई। लगभग 144 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं के साथ तूफान बावी के कल तड़के चीन के झेजियांग प्रांत में टकराने का अनुमान है। इस तूफान के कारण जापान के ओकिनावा प्रांत में 200 से अधिक उड़ानें रद्द की गई। ताइवान में स्कूल और सरकारी कार्यालय भी बंद रहे। इस बीच चीन ने भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिन तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश ने बताया कि अल नीनो के कारण देश में मॉनसून की बारिश सामान्य से कम हुई है।
1: आज के लिए हमारा असम मेघालय के लिए रेड अलर्ट भी है, वहाँ हम 20 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल अनुमान लगा रहे हैं। ईस्ट उत्तर प्रदेश, बिहार, सब हिमालय में शामिल सिक्किम, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जो रेनफॉल एक्टिविटी है आने वाले 4 से 5 दिन कंटिन्यू रहेगी, और नॉर्थ पंजाब, नॉर्थ हरियाणा में आज हैवी रेनफॉल हो सकती है। अगर आप एनसीआर दिल्ली की बात करें, बाई इवनिंग और लेट इवनिंग हल्का फुल्का रेनफॉल हो सकता है।
0: सिक्किम एक बार फिर देश का सबसे समृद्ध राज्य बनकर उभरा है। प्रति व्यक्ति आय के नवीनतम विश्लेषण के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय 6,46,000 रुपए से अधिक रही। ये राष्ट्रीय औसत से लगभग 3 गुना है। देश की कुल आबादी में सिक्किम की हिस्सेदारी केवल 0.05% है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: सिक्किम एक बार फिर भारत का सबसे समृद्ध राज्य प्रति व्यक्ति आय के आधार पर घोषित हुआ है। बिजनेस स्टैंडर्ड की कल प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार सिक्किम के एक औसत निवासी की आय बिहार के एक औसत निवासी की तुलना में लगभग 10 गुना ज्यादा है। पिछले 10 वर्षों से शीर्ष 4 स्थानों पर सिक्किम, गोवा, दिल्ली और चंडीगढ़, जबकि सबसे निचले स्थानों पर बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मणिपुर लगातार बने हुए है। मानव श्रोतिम शर्मा के साथ मोइनाक चैटर्जी, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
0: भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज शाम 7 बजे साउथहैम्पटन में खेला जाएगा। श्रृंखला में इंग्लैंड ने 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के साथ पहले महिला क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली पारी में 1 विकेट पर 21 रन से आगे खेलेगा। माइया बाउचियर 17 और हीथर नाइट 1 रन बनाकर क्रीज पर हैं। इससे पहले कल भारतीय टीम ने पहली पारी में 285 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने 83, कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 58 और दीप्ति शर्मा ने 57 रन बनाए। फीफा फुटबॉल विश्व कप के तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अंतिम क्वार्टर फाइनल में कल सुबह 6:30 बजे वर्तमान चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। इससे पहले स्पेन और फ्रांस सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और न्यूजीलैंड ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित किया। कहा, न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच साझा सफर का एक अहम हिस्सा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्र गिरी का जलावतरण किया। कहा, भारत एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। परिवहन क्षेत्र में तकनीकी और नवाचार आधारित सहयोग मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा पत्र 2026 को अपनाया गया। और भारत तथा इंग्लैंड के बीच 5वां और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज शाम साउथहैम्पटन में। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब आप सुनेंगे खेत खलिहान कार्यक्रम।

लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें।

0: Terms and conditions apply.
1: Work from home? High salary? बस एक क्लिक में? अरे वाह!
2: फंसी!
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए. RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए.
5: खेत कल्याण कार्यक्रम सुनने वाले सारे बाण भाइयों ने राम राम. भाइयों, बरसात का मौसम आया है और यूं कह सकते हैं, चलो हर जगह तो नहीं हुई बरसात, लेकिन बरसात के मौसम एब आ गए तो वह कितने कदे कितने कदे कितनी हो जाएगी बरसात. और पानी की आप कमी देखो वह कितनी कमी हो रही है. लेकिन भाइयों, हमने खुद संभलना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि भाई पानी है ना, उसका ज़्यादा से ज़्यादा शुद्ध उपयोग करा जाए, यानी उसको खाम खान ना बहने दे. खेत में किसान भाइयों इसके लिए खूब बड़ी जिम्मेवारी किसान भाई की कि वह अपने खेत में यह देखें कि वह जो पानी है ना ठोक कर दें, चाहे कोई भी फसल हो उसमें अपना ऐसा कर लें कि वह जितना जरूर छन उतना कड़का हड़का पानी लगाओ. कई बार ये करें कि वह कोई जरूरत ना है भाई, वह अपने पानी ने लगा दे उसमें और ज़्यादा दे दे उसमें, नहीं ऐसा ना कर, दूसरा भाई ने दे दे दूसरा काम चल जाए. लेकिन आप ने ज़्यादा पानी दो उसमें तो आपके पानी की बर्बादी है. और ईव जो खरीफ फसल की बिजाई का काम चल रहा है खूब जोरों पर चल रहा है, रोपाई का भी बिजाई का भी उसमें सारा करें, क्योंकि जुलाई के महीने में ये बरसात आनी शुरू हो जाए तो उसमें ये हो जाए कि भाई उसमें अपने जो खरीफ के हैं उनमें लगाया जाए, खासकर चाहे बरानी इलाके हैं और चाहे सिंचित इलाके, अपने उसमें सर जगह में करें. क्योंकि ये बरसात के अनुसार तो देखा जाए तो बरानी और सिंचित इलाके तो भाई एक सा और है ना, तो ऐसा और पहले बरसात मौसम आ जा रहा कदम बरसात हो जा रहा, यानी इससे मानसून आने से पहले भी, तो उसमें बरानी इलाके में ऐसा कर लें कि वह जो अपने वहाँ बिजाई कर ली जाए. जिस तरह वे इब खाद्यान्न फसलों की बात करें तो बाजरा है जैसे भैया, और दूसरी दलहनी फसलें हैं भाई उनमें आ जाए है, तो ये चीज़ें भैया देख कर अपना कर जा सके. तो इसलिए एक तो ये देखें पानी का पूरा ध्यान रखें, बचत करें. और जिस तरह मौसम में आओगे कि भाई देखो बहुत ज़्यादा पौधे लगाए जाते हैं, तो अपना ये भी ध्यान रख लें कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाओं, अपने खेत में छायादार या फलदार पौधे लगा लें. और देखो पहले तो अपने हर खेत में हर कोने पर होया करता, लेकिन आधुनिक समय में ये देखा कि भाई इतना सघनता आ गया खेती में कि अपने जो जितने वृक्ष हैं वो सारे काटते और लगाते नहीं हैं. तो ये ध्यान रखें भाई, ये मौसम ही आ रहा है. और हाँ, कई बार बताओ भैया कि लगाना लगाना इन्हें उसके पेड़ की देखभाल करनी, संभाल करनी, बड़ा करना भी अपनी जिम्मेवारी है. यानी वो पेड़ बड़ा हो जाए, फलदार फल देना शुरू कर दे तो तब मानिए कि हमने पौधा लगाया, और छायादार है तो छाया देनी शुरू कर दे तब मान के नहीं चलें कि हमने पौधा लगाया, अपना नाम उसमें चल रहा है फिर. तो भाई बात ही भी खाद्यान्न फसलों की करें तो इसमें जिस तरह धान की रोपाई का तो खूब काम जोरों पर चल रहा है भाई, जो बरसात जहाँ जहाँ हो रही है अपने भाई धान की रोपाई लाग रही है करने. और दूसरी फसल जो है मुख्य बाजरा है, जैसे बाजरे में भी अपने खूब सिंचित इलाके में तो ये कहा जा है, और बरानी इलाका में तो ये है कि भाई जब भी बरसात आ जाए उसमें पहली बरसात आने के बाद ही अपनी बाजरे की बिजाई कर देनी चाहिए. सिंचित इलाके में 1 जुलाई से 15 जुलाई तक का है, यानी जुलाई का प्रथम जो पखवाड़ा है उसमें बहुत बढ़िया मौसम रहे इसमें बिजाई करने के लिए. तो इसमें भैया ने बता दें, तो पहले तो किस्में बारे में बता दें बाजरे की, जिस तरह संकर किस्में हुई, इसमें संकर किस्मों में है HHB 50, HHB 60, HHB 94, HHB 67 या संशोधित किस्म है HHB 67, HHB 117, HHB 146, HHB 197, HHB 216, HHB 223 और HHB 226, HHB 234 और HHB 272, HHB 299 और HHB 311, ये कंपोजिट किस्में हैं. और इनमें HC 10 और HC 20, ये किस्में अपनी इसमें बिजाई कर लें कंपोजिट किस्में. तो इसमें ये ध्यान रखें कि भाई एक तो जो संकर बाजरा किस्म के जो लेना हमने बीज, वो हर बार नया लेना है. ये नहीं है कि मान लिया पिछली बार आपने बोया था तो उसको ही वो बीज ले लिया और अपने उसको बिजाई कर दिया, नहीं, इसका हर बार हमने नया बीज लेना पड़ता है. खेत की अच्छी तैयारी कर लें, जब पहली बरसात आ जाए उससे टाइम पर आपने उसने बरानी इलाके में इसकी बिजाई कर दे, और 2-3 बार खेत ने जोत कर मैज पटा सुहागा जरूर लगा ले ताकि खेत में नमी बने रहे, ढेले ना बने उसमें, यूँ इसमें ध्यान रख ले. मैं बीज की बात है भाई, यो बीज इसमें 1.5 से 2 किलो बीज लगेगा 1 एकड़ के लिए, लाइना में बिजाई करनी है भाई हमने, और इसकी गहराई रहेगी बीज की 2 से 3 सेंटीमीटर, यानी इतना एक गहराई पर हमने बीज छोड़ना है. और जो खुडा फासला है वो बता था आप 45 सेंटीमीटर के लगभग खुद से खुद का फासला इसमें रखना.

0: है और लाइन ना बिजाई करनी, ध्यान ये रखना कि इसमें छींटा दे के बिजाई नहीं करनी, इसमें लाइन ना बिजाई करनी। बात इसमें और कराएं खाद की और उससे पहले, लेकिन आपने रागनी सुनवा दिया, गायक कलाकार रहेंगे वेद प्रकाश कौशिकलीपुरी और उनके साथ।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
2: अब 70 वर्ष से अधिक उम्र के देश के हर बुजुर्ग को अस्पताल में मुफ्त इलाज मिलेगा।
3: देश के युवाओं ने लिया है न्यू ईयर रेजोल्यूशन, 70 साल के पार सभी बुजुर्गों का आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड बनाने का, 5,00,000 रुपए के मुफ्त उपचार का उपहार पहुंचाकर भारत को आयुष्मान बनाने का।
4: देश हो रहा है आयुष्मान।
3: आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्गों का आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड बनवाएं। अधिक जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।

तो भाई ये तो आपने रागनी सुनी, गायक कलाकार थे वेद प्रकाश कौशिक अलीपुरी और उनके साथी, और जिक्र कर रहे थे बाजरे की बिजाई पे, तो इसमें किस्में बता दी थी। और भाई ध्यान आपने ये रखना कि जो बीज है आपने 1 से 1.5 से 2 किलो बीज लेना है 1 एकड़ के लिए, और 2 से 3 सेंटीमीटर उसकी गहराई रहेगी बीज की। और उसमें आपने ये भी ध्यान रखना कि जो लाइन बिजाई करनी है वो हमने 45 सेंटीमीटर लाइन से लाइन का फासला इसमें रखना है। बात इसमें अब खादों की है भाई, क्योंकि सिंचित इलाका है तो इसमें 135 किलो तो यूरिया लगेगा, 150 किलोग्राम इसमें सिंगल सुपर फास्फेट लगेगा, और 10 किलोग्राम इसमें जिंक लगेगा। तो जिस तरह आपने बताया कि भाई जिंक तो हर फसल पर आपने देना है, तो सारी ये जिंक और फास्फोरस और 1/3 नाइट्रोजन तो हमने बिजाई के समय देनी है।

और जो नाइट्रोजन हमारी बच जाएगी वह दो बार फिर देनी है, एक तो जब छटाई करांगे उस टाइम पर, और दूसरी जब उसमें बाजार में सट्टे बढ़ने लग जाने उस टाइम पर देनी है हमने। असिंचित जो इलाके हैं उनमें हमने 35 किलो तो यूरिया देना है और 50 किलोग्राम इसमें सिंगल सुपर फास्फेट देना है, और साथ में हमने इसमें जो जिंक है वो ज़रूर देना है, साथ ये ध्यान रखें भाई। और भाई इसमें देखा गया जो चेपा या अर्गट रोग से बचाव खातिर भी हमने अपने बीज को उसका कर देना, सफाई करनी है उसमें, ये क्या है कि 10 किलो बीज और उसमें 1 किलो नमक ले लेना है, और उसमें अपना 10 किलो पानी और 1 किलो उसमें नमक मिला करने, और जो अपना 1.5 से 2 किलो बीज है वो उसमें मिला देना है। तो उसमें आप देखो कुछ देर बाद जो इसमें रोगी पौधे हैं दाने हैं वो ऊपर आ जाएंगे और शेष नीचे रह जाएगा, तो उनने जो ऊपर आ जाए उन्हें निकाल कर उसमें थे और इसने कितने उसने नष्ट कर दे। बाकी बीज ना आप निकालोगे उसने 3-4 बार साफ पानी में धोना है, कारण उसका ये है कि उसका नमक की चास थोड़ी भी नहीं रह जानी चाहिए, 3-4 बार अच्छी तरह उसने धो ले। और फिर उसमें क्या करना, आपने 4 ग्राम थायराम दवाई है 1 किलो बीज के हिसाब से वो लेकर ने, और हमने उसका बीज का उपचार कर देना है, तब जाकर हमने उसकी बिजाई करनी है। बिजाई का बात आप तो बताया था कि लाइना में हमने बिजाई करनी है, और बिजाई के आप ये देखो 3 से 5 सप्ताह बाद आपने इसने निराई गुडाई कर देनी है साथ में ये, क्योंकि पहले हम निराई गुडाई कर दें खरपतवार इसमें नहीं रहेंगे। और जिस तरह बताया था कि वह लाइना फासला हमने लाइन तो लाइन का फासला अच्छा चौड़ा रखना, तो इसमें निराई गुडाई में कोई इसमें दिक्कत नहीं, इतनी परेशानी नहीं होगी। वैसे इसमें जब खरपतवार नियंत्रण खातिर आप दवाई भी देना चाहो तो इसमें 400 ग्राम एट्राजीन है, 50% ताकत का ये घुलनशील पाउडर है, ये 250 लीटर पानी में इसका घोल बनाकर आप छिड़काव कर सको इसमें बिजाई के तुरंत बाद, या फिर आप 10-15 दिन के बाद भी इसका छिड़काव कराया जा सके। और फिर इसमें 75 दिशा में आप ये कर सके भाई, इसकी जो रोपाई है ना रोपाई करी जा सके। आप कई भाई तो जो जागरूक किसान भाई हैं वो अपना एक तरफ उसका बेड है बना लें, जिस तरह ये धारणा कि हम पौध बनाए इसी तरह बाजरे पौध बना लें, जित भी मान लिया उसमें दिखे कि वह गिनकी रह गया जगह ज़्यादा है खाली है तो वहाँ पर उसकी रोपाई कर दे हैं, और पौधा लगा कर तुरंत आप उसमें पानी दे देना है, क्योंकि ये बताया करें कि भाई इसमें आवारा जो है, अगर मान लिया हमने कोई पौधा लाया है पानी नहीं दिया तो आवारा जाएगी, फिर वो पौधा लगेगा नहीं, पानी देने में उसकी आवाज निकल जाएगी, पौधा फिर अपनी जड़ें पकड़ जाएगा, आराम से उसमें लगना शुरू हो जाएगा, चलना शुरू हो जाएगा। और आपने ये ध्यान रखना उसमें जो कि भाई नर्सरी खातर क्यारिया इसी बना लें कि भाई जब भी मान लिया उसमें बरसात आ जाए तो बरसात में उसमें कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, आराम से आपका उसमें पानी जितना चाहिए उतना करे जर, बाकी फिर उसमें लगा ले इसमें। और बात आप एक और रागनी करेगी थी, रागनी एक और सुनवा दिया, गायक कलाकार एक बार फिर वेद प्रकाश कौशिक अलीपुरी और उनके साथी रहेंगे।

तो भैया ने ये तो रागिनी सुनी, गायक कलाकार थे वेद प्रकाश कौशिक अलीपुरी और उनके साथी, और जिक्र कर रहे थे बाजरा की खेती पर। तो भैया इसमें ये बताता है कि तो आपने जिस तरह संकर किस्म है वो लगानी है, या फिर आप इसमें जो दूसरी किस्में हैं संशोधित किस्में या कंपोजिट किस्में वही इसमें लगाओ तो बढ़िया रहे। और बीज का जिस तरह आता है बता कि इनका जो संकर का किस्म का बीज है हर साल आपने नया लेना है, यानी कि मैं पिछले साल आपको थ्रिल जाए थे आपने उसकी बिजाई कर दी थी, आपका उसका बीज बचा हुआ उसने ईव लगा दी उसका, नहीं इसका हर बार नया लेना पड़ता है। और किस्मों का आपने उसमें पूरा ध्यान रखना है कि भाई जो एक बार फिर बता दें आपने किस्में जो शंकर बाजरे किस्में हैं, HHB 50 है, 60 है, HHB 94 है, HHB 67 है या संशोधित किस्म है अपनी, HHB 117, HHB 146, HHB 197, HHB 216, HHB 223, HHB 226, HHB 234, HHB 272 और HHB 299, HHB 311 कंपोजिट है और HC 10 और HC 20 है, ये इसमें कंपोजिट किस्में इनकी बिजाई कर सके। और बीज आपने बता दिया कि हर बार नया लेना है, और बिजाई की जिस तरह बताया था कि भाई जुलाई का जो प्रथम पखवाड़ा यानी 1 जुलाई से 15 जुलाई तक हम उसकी बिजाई कर लेनी चाहिए, हमने 1.5 से 2 किलो बीज लगेगा लाइन में, हमने इसकी बिजाई करनी है लाइन तो लाइन का जो फासला है वो 45 सेंटीमीटर यानी 1.5 फुट का हमने इसमें रखना है। और साथ में इसमें जब हमने जो खाद की बात आओ, खाद इसमें जो सिंचित इलाके हैं उनमें तो 135 किलो तो यूरिया है, 150 किलोग्राम इसमें सिंगल सुपर फास्फेट है और 10 किलोग्राम इसमें जिंक है। ये बताया था कि भाई एक तिहाई तो इसमें हमने वो नाइट्रोजन और सारी सिंगल सुपर फास्फेट और जिंक तो बिजाई के समय पर ही दे देने, बाकी जो ये दो हिस्से बिज जाएंगे इसके नाइट्रोजन, एक तो जब हम उसकी रोपाई कराएंगे उस टाइम पर और एक जब सट्टे बनेंगे उस टाइम पर हमने ये दे देनी है इसमें करना। साथ में अपना ये भी ध्यान रखना कि वह पानी का जो आ जाए तो उसमें रोकना, पानी ने काशियत इंतजाम करें। और भाई घड़ी का ना देख लो, कार्यक्रम का समय समाप्त, अशोक भाई नजर दो, सारे वन भैया ने राम राम।

आपने खेत खलिहान कार्यक्रम सुना। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर डीटीएच और न्यूज़ ओन एआईआर पर ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। 3 बजे हैं, हमारी दूसरी सफ़ा के कार्यक्रम अब खत्म होते हैं। एफएम बैंड 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुनते रहेंगे विविध भारती मुंबई के कार्यक्रमों का अनुप्रसारण। तीसरी सभा में शाम 5:30 पर मीडियम वेव 262.67 मीटर डीटीएच और न्यूज़ ओन एआईआर पर आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे।

मीडियम वेव 262.67 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। शाम के 5:30:13 हुए हैं। हमारी तीसरी प्रसारण सभा के कार्यक्रम अब आरंभ होते हैं। सभा की शुरुआत में प्रस्तुत है कार्यक्रम युवा संसार।

कार्यक्रम युवा संसार में आप सभी श्रोताओं को आपके साथी रिशिता का नमस्कार। साथियों, आज है 11 जुलाई 2026 और प्रतिवर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 1979 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा की गई थी, जब 1987 में विश्व की जनसंख्या 5 अरब के आंकड़े को पार कर गई थी। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को बढ़ती जनसंख्या से जुड़ी समस्याओं के प्रति जागरूक करना है, जैसे परिवार योजना, लैंगिक समानता, मातृ स्वास्थ्य, गरीबी और मानव अधिकार। आज विश्व की जनसंख्या 8 अरब से अधिक हो चुकी है, जो पृथ्वी के संसाधनों पर लगातार दबाव बना रही है। बेतहाशा बढ़ती जनसंख्या के कारण बेरोजगारी, भुखमरी, प्रदूषण और शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसलिए हर व्यक्ति को परिवार योजना के महत्व को समझना और छोटे परिवार को अपनाना आवश्यक है, ताकि आने वाली पीढ़ियों को एक बेहतर और संतुलित जीवन मिल सके। एक ग्रह, अरबों जीवन, एक साझी जिम्मेदारी। विश्व जनसंख्या दिवस पर आइए साथियों याद रखें कि हम जो भी चुनाव करते हैं वह हमारे ग्रह के भविष्य को प्रभावित करता है। जैसे जैसे दुनिया की आबादी बढ़ती जा रही है, टिकाऊ जीवन, जिम्मेदार संसाधन उपयोग और स्वस्थ जीवन शैली पहले से कहीं ज़्यादा

महत्वपूर्ण हो जाती हैं। एक साथ आइए एक ऐसे भविष्य का निर्माण करें जहां लोग और ग्रह हार्मनी में पनपे। और जैसा कि साथियों आप सभी जानते हैं, आज है शनिवार का दिन और शनिवार के दिन हम आपके लिए लाते हैं कार्यक्रम रोजगार समाचार विशेषांक। तो कार्यक्रम का पहला रोजगार समाचार है, IBPS ने प्रोबेशनरी ऑफिसर के ढेरों पदों पर भर्ती निकाली है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। उम्मीदवारों का चयन प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। ग्रेजुएशन डिग्री प्राप्त कर चुके उम्मीदवार निकाली गई पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। कम से कम आयु सीमा 20 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष तय की गई है। इसी के साथ रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को आयु सीमा में छूट दी गई है। इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक आदि सार्वजनिक क्षेत्र की भर्तियों को भरेंगे। पदों की संख्या है 6000 से अधिक। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 21 जुलाई 2026। आवेदन करने के लिए वेबसाइट है www.ibps.in। वेबसाइट हम आपको दोबारा बता रहे हैं www.ibps.in। अगला समाचार है, BPSSC ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर बिहार होमगार्ड कंपनी कमांडर के रिक्त पदों की भर्ती जारी कर दी है। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं जिसकी अंतिम तिथि 30 जुलाई 2026 है। इसके तहत कुल 45 रिक्त पदों को भरा जाना है। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री रखने वाले उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट है bpssc.bihar.gov.in। आवेदन करने के लिए जो पदों के चयन में कुल 5 चरण शामिल होंगे। पहले चरण में प्रारंभिक परीक्षा होगी, दूसरे चरण में मुख्य परीक्षा होगी, तीसरे चरण में फिजिकल टेस्ट होगा, चौथे चरण में डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन किया जाएगा, पांचवें चरण में मेडिकल लिया जाएगा। आयु कम से कम 20 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु 32 वर्ष से ज़्यादा ना हो। आयु में छूट सरकारी नियमों के तहत दी जाएगी। बढ़ते हैं अगले रोजगार समाचार की तरफ। UPSSSC ने वन रक्षक पद के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। कुल 708 रिक्त पद भरे जाएंगे। इसके लिए आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। अंतिम तिथि 20 जुलाई 2026 है। उम्मीदवार के पास माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा पास की हो। उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी जो प्रादेशिक प्राप्त सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो या केंद्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से कंपनी और कंप्यूटर्स एप्लीकेशन में आपने प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, किसी खेल में राज्य की रिप्रेजेंटेशन की हो। आयु सीमा रहेगी 18 से 40 वर्ष। आवेदन करने के लिए वेबसाइट है upssc.gov.in। वेबसाइट हम दोबारा दोहरा रहे हैं upssc.gov.in। अगला रोजगार समाचार है, IBPS ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर स्पेशलिस्ट ऑफिसर के 745 रिक्त पदों पर भर्ती जारी कर दी है। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं जिसकी आखिरी डेट 21 जुलाई 2026 है। ये भर्तियां बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक सहित अन्य बैंक में की जाएगी। IT ऑफिसर स्केल 1, एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर स्केल 1, राजभाषा अधिकारी स्केल 1, लॉ ऑफिसर स्केल 1, HR या पर्सनल ऑफिसर स्केल 1 और मार्केटिंग ऑफिसर स्केल 1 के पदों पर। चयन की प्रक्रिया में प्री परीक्षा, मेंस परीक्षा और इंटरव्यू होगा। वेबसाइट है www.ibps.in। वेबसाइट हम दोबारा बता रहे हैं

साथियों www.ibps.in उम्मीदवार के पास पोस्ट वाइज ग्रेजुएशन या मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, आयु 20 वर्ष से 30 वर्ष के बीच होनी अनिवार्य है। हम ऐसे ही आपको और रोजगार समाचार देंगे, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं गीत फिल्म बाहुबली 2 से। आवाज़ है मधुश्री की, संगीत दिया है MM क्रीम ने, बोल लिखे हैं मनोज मुंतशिर ने। आइए साथियों सुनते हैं ये गीत।

अभी हमने सुना ये गीत फिल्म बाहुबली 2 से, आवाज़ थी मधुश्री की, संगीत था MM क्रीम का और बोल लिखे थे मनोज मुंतशिर ने। साथियों, अपने रोज़गार समाचार विशेषांक के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आप सभी के लिए अगला समाचार है। UPSC ने ड्रग इंस्पेक्टर के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 17 जुलाई 2026 है। इसके लिए आयु सीमा 30 वर्ष तय की गई है। संगठन का नाम है CDSCO। पदों की संख्या है 186 और वेबसाइट है upsc.gov.in। वेबसाइट हम आपको दोबारा बता रहे हैं, upsc.gov.in। अगला रोजगार समाचार है, UPSSSC ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर यूपी गन्ना सुपरवाइज़र के कुल 1182 रिक्त पदों की भर्ती जारी कर दी है, जिसकी अंतिम तिथि 28 जुलाई 2026 है। UPTET 2025 परीक्षा को पास करने वाले उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे। उम्मीदवारों का चयन प्रारंभिक पात्रता परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। वेबसाइट है upssc.gov.in। वेबसाइट हम दोबारा दोहरा रहे हैं साथियों, नोट कीजिएगा, upssc.gov.in। उम्मीदवार के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि में ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। उम्मीदवार की आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। हमारा अगला रोजगार समाचार है, इंडियन एयरफोर्स ने अग्निवीर वायु इनटेक में रजिस्ट्रेशन के लिए प्रक्रिया 26 जुलाई 2026 तक जारी रहेगी। उसके लिए वेबसाइट और पोर्टल iafrecruitment.edcil.co.in या फिर agnipathvayu.cdac.in पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। इस पोस्ट के लिए एलिजिबल और इच्छुक अविवाहित महिला और पुरुष छात्र ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उम्र 17 से 21 साल तक की होनी चाहिए। साइंस सब्जेक्ट्स के लिए मैथ्स, फिजिक्स और इंग्लिश के साथ 10+2 यानी इंटरमीडिएट एग्ज़ाम में कम से कम 50% कुल मार्क्स होना ज़रूरी है। नॉन साइंस के लिए छात्र किसी भी स्ट्रीम से कुल 50% मार्क्स कम से कम 12वीं पास में हो तो सही होगा। पुरुषों के लिए 152.5 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट होना ज़रूरी है। और वेबसाइट हम आपको दोबारा बता देते हैं, iafrecruitment.edcil.co.in या फिर पोर्टल पर agnipathvayu.cdac.in पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अगला रोजगार समाचार है, BPSSC ने बिहार पुलिस दरोगा की भर्ती जारी की है। इस भर्ती अभियान का उद्देश्य SI के कुल 150 पदों को भरना है। दरोगा बनकर राज्य की सेवा करने का सपना देख रहे उम्मीदवारों के लिए सुनहरा मौका है। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 9 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है। इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों का चयन प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। वेबसाइट है bpssc.bihar.gov.in। वेबसाइट हम दोबारा दोहरा रहे हैं साथियों, bpssc.bihar.gov.in। उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएशन या समकक्ष किया होना चाहिए। जनरल कैटेगरी के पुरुषों के लिए न्यूनतम आयु 20 वर्ष से और अधिकतम 37 वर्ष रखी गई है। वहीं महिलाओं के लिए न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष तय की गई है। पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के महिलाओं के लिए न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष तय की गई है। वहीं पुरुषों के लिए 20 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष तय की गई है। पिछड़ा के साथ जो अनुसूचित जाति और

जनजाति के पुरुष हैं वो उनके लिए महिलाओं और उनके महिलाओं के लिए भी साथियों 20 वर्ष से 42 वर्ष तक आयु सीमा होनी चाहिए। अगले रोजगार समाचार की तरफ बढ़ेंगे, उससे पहले सुनते हैं गीत। फिल्म फैने खान से संगीतकार हैं अमित त्रिवेदी, वो आवाज़ें हैं सुनिधि चौहान और दिव्या कुमार की, बोल लिखे हैं इरशाद कामिल ने। आइए सुनते हैं गीत।

अभी हमने सुना ये गीत फिल्म फैने खान से। संगीतकार थे अमित त्रिवेदी, आवाज़ें थी सुनीत चौहान और दिव्या कुमार की, गीतकार थे इरशाद कामिल। साथियों, कार्यक्रम में अगला रोजगार समाचार है। बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन ने बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर के कुल 3,687 रिक्त पदों की भर्ती जारी कर दी है। ये भर्तियाँ 6 विषयों

कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर पूरे बिहार के विश्वविद्यालयों के लिए की जाएगी। इसमें 211 नए राजकीय डिग्री कॉलेज भी शामिल हैं। आवेदन HED पोर्टल के माध्यम से 15 जुलाई 2026 तक होंगे। वेबसाइट है bsusc.bihar.gov.in। वेबसाइट हम दोबारा दोहरा रहे हैं, bsusc.bihar.gov.in। सबसे ज़्यादा आपको जो देखने को मिलेंगी इसमें रोज़गार, इंग्लिश के लिए 674, इतिहास के लिए 652 और हिंदी के लिए 625 में खाली होंगे पद। इन पदों के लिए उम्मीदवार के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। आयु सीमा 21 वर्ष से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अगला रोज़गार समाचार है, यूपी सरकार यानी उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर आंगनवाड़ी के रिक्त पदों पर भर्ती जारी कर दी है। इसके तहत कुल 60,000 रिक्त पदों को भरा जाना है, जिसकी अंतिम तिथि नवंबर 2026 है। 8 जिलों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इनमें मेरठ, बागपत, कन्नौज, बिजनौर, कानपुर और ललितपुर जिले शामिल हैं। वेबसाइट है upanganwadibharti.in। वेबसाइट हम आपको दोबारा बता देते हैं, upanganwadibharti.in। उम्मीदवार के पास किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 12वीं की पासिंग मार्कशीट होना अनिवार्य है। यह पद केवल महिलाओं के लिए आरक्षित है। इसके लिए उम्मीदवार की आयु 18 वर्ष से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अगला रोजगार समाचार है, RRB ने टेक्नीशियन के कुल 6,545 पदों के लिए भर्ती जारी कर दी है। ग्रेड 1 में 323 और ग्रेड 3 में 6,234 पोस्ट भरे जाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस CBT, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम से पूरा होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 29 जुलाई 2026 है। ऑफिशियल वेबसाइट है rrbapply.gov.in। वेबसाइट हम दोबारा बता देते हैं, rrbapply.gov.in। अगला रोजगार समाचार है, SSC SSA 2026 के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह प्रक्रिया 16 जुलाई 2026 तक जारी रहेगी। यदि आप भी केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों में एक सम्मानित पोस्ट और शानदार सैलरी वाली नौकरी पाना चाहते हैं तो SSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करें, ssc.gov.in। वेबसाइट आप नोट कीजिए साथियों, दोबारा दोहरा रहे हैं, ssc.gov.in। साथियों, हम बात कर रहे थे विश्व जनसंख्या दिवस के बारे में। आपको बताएं कि आज के समय में जनसंख्या वृद्धि एक गंभीर वैश्विक समस्या बन चुकी है। भारत विश्व में जनसंख्या के मामले में सबसे आगे है और चीन को पीछे छोड़ चुका है। तेजी से बढ़ती जनसंख्या के कारण प्राकृतिक संसाधनों जैसे भूमि, जल, वन और खनिजों पर अत्यधिक दबाव पड़ रहा है। इसके साथ ही बेरोजगारी, गरीबी, कुपोषण, प्रदूषण और आवास की कमी जैसी समस्याएं भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं पर भी जनसंख्या वृद्धि का सीधा असर पड़ता है, क्योंकि संसाधन सीमित होते हैं जबकि जनसंख्या असीमित रूप से बढ़ती जाती है। इस समस्या के समाधान के लिए परिवार नियोजन को बढ़ावा देना अत्यंत आवश्यक है। महिला शिक्षा और सशक्तिकरण भी जनसंख्या नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि शिक्षित महिलाएं परिवार नियोजन के महत्व को बेहतर ढंग से समझती हैं। सरकार द्वारा भी समय समय पर विभिन्न योजनाएं चलाई जाती हैं, जैसे परिवार नियोजन कार्यक्रम, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार और जन जागरूकता अभियान, ताकि लोगों को छोटे परिवार के लाभों के बारे में समझाया जा सके। विश्व जनसंख्या दिवस हमें यह याद दिलाता है।

क्षेत्रों में आज भी अधिक संतान होने को सामाजिक प्रतिष्ठा से जोड़ा जाता है। इसके अलावा स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के कारण मृत्यु दर में कमी आई है, जबकि जन्म दर उतनी तेजी से नहीं घटी, जिससे जनसंख्या असंतुलित रूप से बढ़ती गई। साथियों, अब हमको ये यदि समय रहते हम इसको ठीक नहीं करेंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ियों को ही दिक्कत होगी। तो साथियों, वक्त हो चला है कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने का। उम्मीद है आपसे मिलेंगे फिर ऐसे ही किसी दिन। तब तक के लिए नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा संसार, आकाशवाणी का ही रोहतक केंद्र है। शाम के 6 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी समाचार। समाचार रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की अपनी दो दिन की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। चार दशकों से अधिक समय में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की ये पहली यात्रा थी। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत की। दोनों नेताओं ने रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन और दुग्ध तथा पशुपालन सहित विभिन्न क्षेत्रों में 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इस यात्रा का प्रमुख आकर्षण ऑकलैंड के स्पार्क एरिना में आयोजित सामुदायिक कार्यक्रम था, जिसमें भारतीय प्रवासी समुदाय के 10,000 से अधिक सदस्यों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री लक्सन ने सभा को संबोधित करते हुए भारत को एक विश्वसनीय मित्र बताया, न्यूजीलैंड की प्रगति में भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना की और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा की। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री लक्सन को उनके गर्मजोशी भरे आतिथ्य के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि इस यात्रा ने भारत न्यूजीलैंड संबंधों में एक नया अध्याय खोल दिया है।
1: न्यूजीलैंड वो जगह है जहां निखिल रविशंकर एयर न्यूजीलैंड के सीईओ बन सकते हैं, जहां आनंद सत्यानंद गवर्नर जनरल बन सकते हैं, जहां क्रिकेट टीम में रचिन रविंद्र, कहीं बॉम्बे हिल्स है, कहीं कोरोमंडल है, ऐसे कितने ही नाम है। यहाँ रहते रहते आप भी पूरे के पूरे कीवी हो गए हैं।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्रगिरी को नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया। प्रोजेक्ट 17A का ये युद्धपोत भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति और स्वदेशी रक्षा क्षमता का परिचायक है। श्री सिंह ने कहा कि ये युद्धपोत अत्याधुनिक स्वदेशी हथियारों से सुसज्जित है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने व्यक्तित्व निर्माण में पुस्तकालयों की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए युवा पीढ़ी से पुस्तकालयों से जुड़ने की अपील की है। नई दिल्ली में आज जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण एक महान स्वतंत्रता सेनानी, विचारक और राष्ट्रवादी नेता थे, जिन्होंने देश के लिए उल्लेखनीय योगदान दिया। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य योजना उन्नयन योजना PMFME ने देश भर में 2,00,000 से ज्यादा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को ऋण मंजूर करने का अहम पड़ाव पार कर लिया है। योजना के अंतर्गत 20,300 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हुआ है और लगभग 11,00,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। नई दिल्ली में आज एक विशेष कार्यक्रम में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि ये योजना भारत की खाद्य प्रसंस्करण विकास यात्रा के अगले चरण के लिए एक मजबूत आधार है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि लोकतंत्र में मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन संविधान और जन कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता सर्वोपरि रहनी चाहिए। उन्होंने बिहार में गयाजी में राज्य के लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में 18वीं विधानसभा के सदस्यों के लिए

0: आयोजित 2 दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए ये बात कही। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष होंगी। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट आज वियतनाम के फू कोक द्वीप के पास पलट गई। स्थानीय खबरों के अनुसार 15 लोगों के मारे जाने की आशंका है, जबकि 21 लोगों को बचा लिया गया है। हनोई स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि खोज और बचाव अभियान जारी है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वियतनाम के फू कोक द्वीप के पास भारतीय नागरिकों के साथ हुई दुखद नाव दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। दूसरे मुकाबले में कल सुबह 6:30 बजे मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

पहले हमारे आज के शेष कार्यक्रम। संस्कृति भारती पत्रिका संस्कृति भारती, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 9:30 पर। संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 10:00। ये दोनों कार्यक्रम रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

कृषि जगत आप सुनेंगे शाम 6:20 पर, ग्रामीण संचार कार्यक्रम होगा शाम 7:00, रात 8:25 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत, फिल्म संगीत सुनिएगा शाम 7:30 पर, रात्रि 9:15 पर एक फिल्म से कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे काबिल फिल्म के कुछ गीत। ये थे आज के शेष कार्यक्रम।

अब सुनिए कल के कार्यक्रमों का विवरण। प्रातः 8:30 पर बच्चे सुनेंगे अपना साप्ताहिक कार्यक्रम बालकुंज। दोपहर 12:30 पर घर आंगन कार्यक्रम में आप सुनेंगे बच्चों की मुस्कान का राज, टेढ़े मेढ़े दांतों का सही इलाज। इस विषय पर बातचीत विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर ज्ञानेंद्र मिश्रा। युवा संसार कार्यक्रम सुनिएगा शाम 5:30 पर। सुबह सवेरे कार्यक्रम रहेगा प्रातः 7:35 पर। कृषि जगत कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 6:20 पर। शाम 7:00 सुनिएगा कार्यक्रम ग्रामीण संसार। दोपहर 2:30 पर होगा कार्यक्रम खेत खलिहान। सांग आप सुनेंगे रात्रि 9:30 पर। सुगम संगीत कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 8:25 पर।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक कलाकार आप सुनेंगे प्रातः 9 बजे। फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपके अनुरोध पर आप सुनेंगे 1:10 पर। कल का ये कार्यक्रम रहेगा ईमेल आधारित। फिल्म संगीत आप सुनेंगे शाम 7:30 पर।

रात्रि 9:15 पर सुनिएगा कार्यक्रम एक फिल्म से। ये थी हमारे केंद्र से आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। शाम के 6:10 होने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें रिले किया जाएगा आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप सुकीर्ति से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्रगिरी को नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पूरे समाज से एकजुट होकर नशों और नशा फैलाने वालों के विरुद्ध जन आंदोलन खड़ा करने का आह्वान किया। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री ने भिवानी में वेलनेस सेंटर और फिजियोथेरेपी केंद्र का लोकार्पण किया। कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवार ने कहा, हिसार को जल्द जाम मुक्त किया जाएगा। फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र में विशेष गहन पुनर्निरीक्षण की प्रगति का जायजा लेने के लिए बूथों का निरीक्षण किया गया और थानेसर 104 नंबर बूथ पर गैर हाजिर पाए गए BLO को कुरुक्षेत्र के उपायुक्त ने निलंबित किया। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्रगिरी को नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया। यह युद्धपोत भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति और स्वदेशी रक्षा क्षमता का परिचायक है। श्री सिंह ने कहा कि INS महेंद्रगिरी में 75% से अधिक स्वदेशी घटकों का इस्तेमाल हुआ है। उन्होंने कहा कि यह युद्धपोत अत्याधुनिक स्वदेशी हथियारों से सुसज्जित है। इससे हिंद महासागर में भारत की समुद्री ताकत और बढ़ेगी।
1: जब देश की सुरक्षा पर बात आती है तो हमारी कन्वेंशनल और मॉडर्न दोनों क्षमताएं मिलकर कैसे एक साथ काम करती है। ऑपरेशन सिंदूर अपने आप में इसका बहुत ही सटीक उदाहरण था। हमारी आर्म्ड फोर्सेज ने उस ऑपरेशन के दौरान यह दिखाया कि भारत अब न केवल अपनी रक्षा करने में बल्कि आवश्यकता पड़ने पर निर्णायक उत्तर देने में और दुश्मनों का समूल नाश करने में भी पूरी तरह से सक्षम।
0: मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने आज नशा मुक्त हरियाणा के लिए पंचकुला में हरियाणा उदय अभियान के तहत गैर सरकारी संगठनों एवं केमिस्ट संगठनों के साथ संवाद किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नशा केवल कानून व्यवस्था की चुनौती नहीं बल्कि समाज, परिवार, संस्कृति और राष्ट्र निर्माण से जुड़ा अत्यंत गंभीर विषय है। सरकार कानून बनाकर और पुलिस कार्रवाई कर नशे के कारोबार पर अंकुश लगा सकती है, लेकिन अगर पूरा समाज एकजुट होकर जन आंदोलन खड़ा करे तभी नशा फैलाने वाले लोगों पर अंकुश लगेगा।
2: हरियाणा का बहुत बड़ा ब्रेक जो नशा फैलाने वाले लोग हैं उनके ऊपर लग जाएगा। जहां आंखों में नशे की धुंध नहीं साथियों विकास का उजाला होगा। जहां जीवन विनाश की ओर नहीं सफलता और संस्कार की ओर बढ़ेगा। आज मुझे आप सबकी आंखों में एक ही जज्बा दिखाई दे रहा है। यह जज्बा है नशा मुक्त हरियाणा का सपना साकार करने का है।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत के निर्माण का लक्ष्य लेकर देश आगे बढ़ रहा है। इस लक्ष्य की प्राप्ति तभी संभव है जब देश और प्रदेश का युवा नशे से मुक्त होकर अपनी ऊर्जा राष्ट्र निर्माण में लगाए। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त हरियाणा केवल एक सामाजिक अभियान नहीं बल्कि विकसित हरियाणा और विकसित भारत के निर्माण की मजबूत आधारशिला है। कार्यक्रम में आए सभी लोगों को नशा न करने की शपथ भी दिलाई गई। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह

0: राव ने आज भिवानी में महम रोड पर जगन्नाथ सर्राफ वेलनेस सेंटर एवं हरियाणा योग प्राकृतिक चिकित्सालय परिसर में नव निर्मित फिजियोथेरेपी केंद्र का लोकार्पण किया। मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जुलाई को जींद से भिवानी और महेंद्रगढ़ जिला के कोरियावास को नए मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ करेंगे। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में प्रदेश को और अधिक बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध है। कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा ने कहा है कि हिसार को जल्द जाम मुक्त किया जाएगा। सरकार द्वारा गठित विशेष समिति की पांचवी बैठक में इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा की गई है। उन्होंने कहा कि शहर की यातायात व्यवस्था को अधिक सुगम, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने की दिशा में लक्ष्मीबाई चौक से टाउन पार्क तक सड़क को 6 मार्गीय किए जाने की महत्वाकांक्षी परियोजना की सभी बाधाएं दूर हो गई हैं। उन्होंने कहा कि अनापत्ति प्रमाण पत्र मिलने के बाद 3,08,56,000 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति भी प्राप्त हो गई है।
1: जो गंगवा रोड पे स्लिप रोड बनने हैं उसपे भी और जो हमारा तुलसी चौक है उसपे भी ये काम जल्दी शुरू हो जाएगा। और अभी हमारी एनओसी जो 6 लेन की है जो लक्ष्मीबाई चौक से और टाउन पार्क है वहाँ तक वो भी आ गई है और टेंडर उसके लग जाएंगे, तो जल्दी सब पे काम हो गया और इससे शहर के लोगों को काफी राहत जाम से मिलेगी।
0: हिसार के बस अड्डे की जगह बदलने को लेकर उन्होंने कहा जमीन हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जल्द ही इसे शहर से बाहर भेजा जाएगा। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत अम्बाला मंडल के 4 रेलवे स्टेशन मोहाली, अम्ब अंदौरा, आनंदपुर साहिब और कालका उद्घाटन के लिए पूरी तरह तैयार है। मंडल रेल प्रबंधक विनोद भाटिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जींद दौरे के दौरान इन 4 स्टेशन का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन कर सकते हैं, इसलिए आज अधिकारियों के साथ इन स्टेशन का निरीक्षण किया गया है। उन्होंने बताया कि अम्बाला रेल मंडल में लगभग 15 अमृत भारत स्टेशन बनाए जा रहे हैं।
2: अम्बाला मंडल में अभी 15 अमृत भारत स्टेशन हैं, जिनमें से एक ऑलरेडी इनॉग्रेट कर दिए हुआ है सहारनपुर स्टेशन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर द्वारा। अभी हम लोगों को पता चला है कि मोस्ट लाइकली अम्बाला डिवीजन के 4 अमृत भारत स्टेशन इनॉग्रेट होंगे, जैसा कि मोहाली, अम्बंदोरा, आनंदपुर साहब और एक कालका। तो इन चारों स्टेशन की जो कॉस्ट है कंस्ट्रक्शन बिटवीन 20-30 करोड़ के बीच में है और सारी फैसिलिटीज और जो पैसेंजर अमेनिटीज है वो एकदम रेडी है।
0: फरीदाबाद जिले की अतिरिक्त उपायुक्त अंजलि श्रोत्रिया ने आज भारत निर्वाचन आयोग के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण SIR अभियान की प्रगति का जायजा लेने के लिए विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने बूथ लेवल अधिकारियों BLO से गणना प्रपत्र के संग्रहण, डिजिटलीकरण और पोर्टल पर अपलोड की स्थिति की जानकारी ली और सभी कार्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप पारदर्शिता, शुद्धता और निर्धारित समय सीमा में पूरे करने के निर्देश दिए। मीडिया से बातचीत में अतिरिक्त उपायुक्त ने मतदाताओं से समय रहते फार्म जमा करने की अपील की।
3: फरीदाबाद में वर्तमान में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR का कार्य चल रहा है। BLO घर घर पहुंचकर एनुमरेशन फॉर्म उपलब्ध करा रहे हैं। सभी से अनुरोध है कि इस कार्य में पूरा सहयोग दें। फॉर्म को सावधानी पूर्वक भरकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ यथाशीघ्र अपने BLO को वापस जमा करवा दें। 14 जुलाई अंतिम तिथि का इंतजार न करें। जितनी जल्दी आप फॉर्म जमा करेंगे उतनी ही तेजी और सुचारू रूप से मतदाता सूची का शुद्धिकरण एवं अद्यतन कार्य पूरा किया जा सकेगा।
0: कुरुक्षेत्र के जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने आज विशेष गहन पुनर्निरीक्षण SIR के तहत चल रहे कार्य की समीक्षा के लिए विभिन्न बूथों का निरीक्षण किया। उन्होंने निरीक्षण के दौरान अपने मतदान केंद्र पर गैर हाजिर पाए गए थानेसर विधानसभा के 104 नंबर बूथ के BLO को निलंबित कर दिया। श्री विश्राम कुमार मीणा ने बताया कि इस बूथ पर दूसरे BLO को नियुक्त किया गया है। विशेष गहन पुनर्निरीक्षण के अब तक हुए कार्य का विवरण देते हुए उन्होंने कहा,
4: स्पेशल इंटेंसिव रिविजन कुरुक्षेत्र की चारों विधानसभा क्षेत्रों में आज हमने की समीक्षा करी है। अब तक पूरे जिले का 80% फॉर्म डिजिटाइज हो चुके हैं और 8% के करीब मतदाता एब्सेंट है या शिफ्ट हो गए हैं और अब लगभग 10% के करीब मतदाता का फॉर्म आया नहीं है और अब हमारे पास सिर्फ 3 दिन का समय बचा है। तो मेरे सभी क्षेत्रवासियों से मेरी है आप अपना फॉर्म सबमिट कर दें, बाद में अगर वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं आता है तो मल्टीपल प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा।
0: हरियाणा सरकार के आग लगने की घटनाओं से बचने के लिए चलाए जा रहे जन जागरूकता अभियान के तहत आज पलवल जिला अग्निशमन विभाग द्वारा रसूलपुर चौक स्थित कोचिंग संस्थानों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। मॉक ड्रिल का नेतृत्व कर रहे अग्निशमन विभाग के उप अग्निशमन अधिकारी नवीन पॉल ने बताया कि आज 2 कोचिंग संस्थानों मित्तल क्लासेस एवं आकाश इंस्टीट्यूट में मॉक ड्रिल की गई। संस्थानों के प्रबंधन, शिक्षकों एवं बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने इसमें भाग लेकर अग्नि सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त की। विद्यार्थियों को अग्निशामक यंत्र का सुरक्षित एवं प्रभावी उपयोग भी सिखाया गया। उन्होंने कहा कि दोनों कोचिंग संस्थान अग्नि सुरक्षा प्रबंध को लेकर जागरूक दिखे।
5: जो दोनों बिल्डिंग है मित्तल क्लासेस और आकाश इंस्टीट्यूट के पास फायर एनओसी है और इनके पास फायर इक्विपमेंट्स भी लगे हुए हैं। ये फायर सेफ्टी मेजर्स को भी फॉलो करते हैं और टाइम टू टाइम ये इंटरनल ड्रिल भी करते हैं जैसे कि हमें जानकारी मिली है। अपील करता हूँ कि जितने भी बाकी इंस्टीट्यूट है उनको इन इंस्टीट्यूट से सीखना चाहिए और अपने अपनी बिल्डिंग की फायर एनओसी जरूर लेनी चाहिए और आपके जितने भी फायर इक्विपमेंट्स जो जरूरी है उनको लगवाना चाहिए।
0: मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट INS महेंद्रगिरी को नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया। इसी के साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।
6: आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

कार्यक्रम सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने अशोक भाई की राम राम। भाइयों जिस तरह कर रहे थे भाई जिक्र दिन में भी, भाई जो ये अपनी खरीफ की फसलें हैं इनकी बिजाई का काम है, या यूँ कह सकता है कि भाई लाग रहे हैं रोपाई का काम, धान की रोपाई का काम वो है, बाजरे की बिजाई का किराया था दोपहर ने जिक्र भाई इसमें, और जो अपनी दलहनी फसलें हैं वो हैं सारी की सारी। भाई कपास फसल का भी पूरा उचल रहा है, इसमें अपना कीड़ी बीमारियाँ का देखते रहे, मेरी शायद ना हो कि शुरुआत में देखो जो भी चीज़ हम कर लिया हम और रहे बढ़िया, वो बात ये हो जाए ना कि काबू साचार झगड़ा जूठा जो बात कही जा रहा अपने बुजुर्ग के हैं वो यही है कि शुरू में आते ही कोई चीज़ हो जाए है वह पकड़ी जाए तो रहे ठीक, लेकिन अगर बाद में जाकर उसमें गौर करा है तो इतनी देर उसमें भाई आप ये देखो कि हमारा खर्चा भी बहुत ज़्यादा हो गया है, नुकसान भी उसमें ज़्यादा हो गया है, और फिर उसमें ये रहे कि जो परेशानी है वो भी ज़्यादा हो जाए, तो इन चीज़ों का हमने पूरा ध्यान रखना है। साथ में कि पानी की बचत का उसमें पूरा ध्यान रखना भाइयों कि भाई पानी की बचत हमने हर हाल में करनी है, चाहे हमारी कोई सी फसल है किसी तरह की है, जब ये बार बार कहा कि भाई तो ठोक के पानी नहीं लगाना चाहिए हमने, और तभी जाकर इसमें बात बनी जा सके कि वह अपने पानी की बचत करी जा सके। एक जो सही बीज का चुनाव है हमें उसका करना ज़रूरी है, जैसे दोपहर ने बाजरे के बारे में बताया था कि भाई अपने उसमें जो शंकर बाजरा लेना है बीज लेना है वो हमेशा क्या करना है अपने नया लेना है, अपने जो घर में है पिछली बार जो आप थैली ले आए थे उसकी बिजाई करी थी वो बीज नहीं लेना है। अब जैसा कि आप जानते हो सारे के सारे बस शंकर का है, दूसरी पीढ़ी का उसमें नहीं इस्तेमाल कराया जा सकता कोई बीज, तो ये उसमें पूरा ध्यान रखना है। और बीज का उपचार करके चल रहा हमें तो भैया बहुत सी तो हमारी जो बीमारियां हैं उनके पीछा छूट जाए हमारा, क्योंकि बीज का तो जब हमें ज़मीन में डाला हाँ उसी टाइम तो शुरू हो जाए उसके ऊपर कि भाई वो दिमक आनी शुरू हो जाए या और दूसरी जो बीमारियाँ उस बीज से जनित बीमारियाँ पा जाएँ, उसमें ध्यान हमने ये रखना है। एक तो बीज का उपचार करना शुरू कर दे तो बहुत बढ़िया, और कई भाई तो अपने इसमें खूब जोर भी दे रहे हैं, यानी बीज का उपचार कर लिया हाँ तो उसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं होती, एक आम साधारण सा उपचार है, और उसके बाद उसमें बहुत ज़्यादा हमने आगे उसमें उसके जमाव में आगे बुढ़वार में पैदावार में हर जगह से वो फायदा दिए, तो ये ध्यान रखें। एक दूसरी बात जो उसमें किस्त कोई दूसरी प्रकार के बीज आ जाए, यानी एक बीज में खरपतवार के बीज पा जाए उनका भी निकालने का अपना पहले रास्ता आ जाए, बीज में बिजाई करने से पहले हम निकाल लिया उसकी साफ सफाई, जिस तरह अब जून का महीने में कराया था गेहूं का कराया था बताया कि भाई मई जून में उसको धूप का उपचार दिया जाए गेहूँ,

0: अच्छी तरह धो धा कर और खूब उसमें एक आधा बार धूप में सुखा लो, और फिर उसके बाद आपने उसका आगे बीज का इस्तेमाल करना। तो इसमें कई तरीके की हैं, जो फफूंद हैं ये कई तरह की जो बीमारियां हैं वो उसमें आगे नहीं आऊँ हमारे। तो इस तरह का हमें कि देसी इलाज भी कर लें तो वो भी बहुत बढ़िया है, हमें आगे जाके फ़ायदा करा है हमें, और जो हमारे बीज में जो गुणवत्ता है आगे फसल में वो गुणवत्ता भी आती है उसमें। तो ईश्वर अपना एक यूँ करा कि मैं जागरूकता लेकर चला या एक अभियान छेड़ जा तो वो बढ़िया रहे, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़रूरी है इसमें कि बढ़िया बीज का या बढ़िया फसल का को हो तो वो खाई जाए तो वो ही बढ़िया रहे। ना तो जिस तरह अपने बड़े बुजुर्ग यह बात कह रहे कि आजकल तो जहर का खाना है, जहर का खाना यही कह जहर का खाना जो रासायनिक दवाइयों का ज़्यादा से ज़्यादा खादों का दवाइयों का प्रयोग हो रहा है वो उसका यही कारण है। यानी उसमें जो पोषक तत्व होने चाहिए जो हमारी फसलों में वो पोषक तत्व नहीं रहे, फसलों के जमीन में ही नहीं रहे, जमीन में नहीं है तो फिर फसलों में भी नहीं। तो हमने वो भी बार बार कहे जहाँ जमीन का भी अपना उसका करना चाहिए, मिट्टी पानी की जांच करवानी चाहिए, उन सब जगह हमें ध्यान देना चाहिए। और बात ही हमें कर रहे थे कि भाई जिस तरह जो ये अपनी खरीफ की फसलें चल रही है खासकर इसमें ये जो धान की रोपाई का काम है बहुत ज़ोरों पर चल रहा है भाई। इसमें एक इसका तो जरूर बात कहेंगे कि भाई जो ऊंची जगह जहाँ पानी संभव न हो वहाँ पर ना लगाओ तो बढ़िया रहे, वहाँ अपनी दूसरी फसल ले ले, क्योंकि उसमें एक आजकल जो आप देखो डीजल भी बहुत महंगा हो रहा है, उस डीजल से आप करोगे तो फिर खर्चा ज़्यादा हो जाएगा। फिर वही बात है किसान भाई ये कहता है कि खर्चा ज़्यादा हो जाता है, उसका ये कारण हम सोच समझ कर अपना इस्तेमाल कराएंगे बात में काम में तो रहेगा बढ़िया भाई। और हाँ धान की फसल लगाएं उसमें बहुत ज़्यादा उपचार की उसके करें, बीज का आपने बिजाई करी थी जब पौधा है उस टाइम पर तो आपने कराया हुआ बीज का उपचार कराया था, आगे जाकर पौधा रोपाई करना रहे तो इसमें भी वो करे हैं। एक एक खरपतवार बहुत ज़्यादा नुकसान करने लग जाए इस टाइम पर, क्योंकि जब लगाएं उसी टाइम से ही हो जाए, हालांकि गार्ड वगैरह मारे बाकी भाई बढ़िया कर रहे हैं लेकिन फिर भी इसमें ये है हरी खाद का भी इस्तेमाल कर रहे हैं सारे उसमें, तो जो धान फसल में खरपतवार आ जाए हैं और वो काफ़ी नुकसान कर दे हमें, और वो फसल और नुकसान का ये कह के होने नहीं देंगे। तो आज आपने एक पूर्व प्रसारित बातचीत सुनाएंगे धान फसल में खरपतवार नियंत्रण, तो सुनिए बातचीत।
1: भैया आज बातचीत करेंगे धान की फसल में खरपतवार नियंत्रण, और इस बारे में आज जानकारी देने के लिए हमारे बीच स्टूडियो मौजूद हैं, आप हैं डॉक्टर धर्मवीर यादव, आप अक्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र बावड़ से यहाँ पधारे हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका स्टूडियो में स्वागत है।
2: धन्यवाद भाई साहब।
1: डॉक्टर साहब बात करें हम धान की फसल की, तो देखो इब 1 जुलाई थे और बल्कि 1-2 दिन पहले इसकी रोपाई का काम शुरू हो गया, और जित भी बारिश हुई है जहाँ भी उससे के हिसाब ने देखें हम धान की फसल ले हैं
2: जी,
1: तो इस हिसाब ने देखे हैं तो फिर ऐसा हो जाता है कि जो भी बात हम करेंगे तो धान की सीधी बिजाई की भी और रोपाई वाली की भी, लेकिन पहले बात करेंगे हमें अपनी जो रोपाई वाली है ना उस फसल की।
2: जी जी,
1: तो इसमें हम देख कर चलेंगे कि जो भी फसलें चल रही हैं अपनी वो हैं रोपाई वाली, उसमें ये बात ध्यान रखें कि भाई हमने शुरुआत में के एहतियात बरतने हैं और फिर फसल की रोपाई के एहतियात बरतने हैं कि आगे हमारी फसल में कोई खरपतवार नियंत्रण ना आवे। अच्छा एक बात और है कि इसमें खरपतवार हो कौन कौन से पहले तो जानकारी हमने यह लेनी पड़ेगी।
2: हाँ बिल्कुल बलजीत भाई, मैं आपको बताऊँ सबसे पहले तो जो दोनों विधियाँ आपने जिक्र किया रोपाई वाली धान और धान की सीधी बिजाई
1: जी,
2: तो दोनों में खरपतवार में थोड़ा फर्क है। अगर हम सीधी रोपाई वाली धान की बात करते हैं तो उसमें आमतौर पर बरटा, सामक, मोथा, डिल्ला और मिर्ची बूटी इस तरह के चौड़ी पत्ती के खरपतवार आते हैं
1: जी।
2: और लेकिन धान की जो सीधी बिजाई है उसमें बरटा, सामक, मोथा, डिल्ला, इसके अलावा एक लेप्टोक्लोवा, एक चिड़िया घास और मकड़ा
1: जी।
2: तो इस तरह की ये कुछ ऐसे खरपतवार हैं जो आमतौर पर धान में नहीं आते हैं, वो भी इसमें आ जाते हैं। तो ये थोड़ा फर्क है दोनों विधियों के अंदर
1: जी।
2: सीधी बिजाई में खरपतवारों की संख्या और आक्रमण थोड़ा सा ज़्यादा होता है
1: जी।
2: तो इसलिए उसका नियंत्रण भी उसी तरह से अलग तरीके से करना पड़ेगा। रही बात जो आप अभी कह रहे थे कि क्या ध्यान रखें, तो अगर अच्छे से कद्दू किया हुआ खेत है, पाड़े काटे हुए हैं तरीके से, तो आप ये मान के चलिए कि आधी समस्या तो वहीं समाप्त हो जाती है जो रोपाई वाली धान है, क्योंकि जहाँ भी पानी सूखेगा या पानी कम होगा, पाड़े अच्छे से नहीं कटे होंगे, तो वहाँ पे

0: खरपतवारों का जमाव ज़्यादा होगा,
1: बिल्कुल
0: और दवाई का जो असर है वो भी उसी खेत में बेहतर आएगा अगर कोई हम खरपतवार नाशक डालते हैं। जिस खेत में कद्दू अच्छे से किया है वहाँ पे दवाई भी अच्छा काम करेगी।
1: जी
0: तो पहला काम तो यही है कि आप खेत की अच्छे से तैयारी करें,
1: हाँ
0: पाड़े अच्छे से काटें, और फिर जो जो दवाई डालनी है उसकी हम चर्चा अभी आगे करेंगे।
1: जी
0: वो कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो बिजाई के रोपाई के तुरंत बाद डालनी है,
1: हाँ
0: कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो हमने 10 दिन बाद, कोई 15 दिन बाद या 20 दिन बाद डालनी है।
1: डॉक्टर साहब, बात करें देखो धान की रोपाई तो पहले किसान भाई अपने जो खेत से उन बाएँ जहाँ हैं कल्टीवेटर ते हैरो होते हैं उसमें भी कुछ फर्क पड़ा है आगे चाल करने के भाई इसमें खरपतवार
0: बिल्कुल,
1: ना
0: उससे
1: होंगे।
0: पहले ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया और बहुत अच्छी चीज़ याद दिलाई कि खेत को जुताई करना सूखी, एक तो ये काम है। दूसरा एक तकनीक का नाम है स्टेल बेड तकनीक।
1: जी
0: स्टेल बेड का मतलब है कि या तो पानी दे दें उससे खरपतवार जम जाएं, या बारिश हो गई है तो उसमें खरपतवार उग गए, और
1: जी
0: फिर जो उगे हुए खरपतवार हैं उनको हम हल चला के और खेत में मिला दें।
1: हाँ
0: तो इससे फिर क्या होगा कि जो आपके खरपतवार हैं उनकी संख्या जो है वो कम आएगी।
1: जी
0: तो ये स्टेल बेड टेक्निक का अगर प्रयोग करेंगे, और
1: हाँ
0: ख़ास तौर से मैं आपको बताना चाहूँ जो अपनी सीधी बिजाई वाली धान है उसमें तो इसका विशेष तौर से फ़ायदा मिलता है।
1: जी
0: उसके अंदर कई बार जो दूसरा जंगली धान है वो आ जाता है, या पिछले साल के धान के पौधे आ जाते हैं,
1: हाँ
0: वीडी राइस उसको बोलते हैं,
1: जी
0: और ये दूसरे वीड भी अगर हम स्टेल बेड अपनाएंगे तो खरपतवारों की संख्या कम होगी।
1: जी बाकी डॉक्टर साहब रोपाई हम करें हैं चलो उसमें हम थोड़ा खर्चा ज़्यादा हो जाए है, लेकिन अब की बार कुछ देखने को आया इलाके में कि भाई जो सीधी बिजाई है ना उस पर भी लोगों का रुझान ज़्यादा बढ़िया है।
0: अब वो उसके कारण दो तीन हैं। एक तो क्योंकि मजदूरों की जो अवेलेबिलिटी है वो कम हो गई है,
1: जी
0: और क्योंकि मजदूरों का खर्चा भी बहुत है इसमें,
1: बिल्कुल
0: तो उसको बचाने के लिए इस विधि से आप लगा सकते हो। दूसरा इसमें पानी की भी बचत है, और सरकार भी मदद कर रही है, 4,500 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से सरकार इस पे अनुदान देती है, सहायता प्रदान करती है अगर आप सीधी बिजाई करोगे
1: जी।
0: तो। पानी भी बचता है, आपका ज़मीन भी सुधरती है,
1: हाँ
0: और पैसे भी सरकार देती है,
1: जी
0: और मजदूरों की समस्या भी समाप्त होती है।
1: हाँ
0: तो
1: जी
0: उस वजह से ये एक बेहतर तरीका है। हाँ, ये अलग बात है कि क्योंकि पानी खड़ा नहीं होता तो वीड थोड़े से ज़्यादा आते हैं, तो उसके लिए दवाइयाँ हैं, और तरीके से किया जाए तो वो पूरी तरह नियंत्रण में आ जाते हैं।
1: जी तो बात करें हम जो रोपाई में रोपाई कर रखी है हमने जिंदाना की और उसमें खरपतवार आ जाए हैं तो सबसे पहले कौन से खरपतवार उगने शुरू हों डॉक्टर साहब जब रोपाई करें हैं उसके बाद?
0: शुरुआत में सबसे पहले बरटा सामक और मोथा डिल्ला ये शुरू में ही आ जाते हैं।
1: जी
0: तो हमने उसमें कुछ खरपतवार नाशी हैं जो रोपाई के तुरंत बाद डालने या 3-4 दिन के अंदर डालने हमने।
1: जी
0: तो जैसे एक ब्यूटाक्लोर नाम की दवाई है, बहुत पुरानी दवाई है और अभी भी उतनी कारगर है, तो 1200 मिलीलीटर एक
1: अच्छा।
0: एकड़ में। इसके अलावा एक प्रिटिला क्लोर है जो रिफिट और इसके नाम से आती है, तो वो भी 800 मिलीलीटर प्रति एकड़। तो इनको रोपाई के 3 दिन के अंदर हमने
1: डालना
0: खेत
1: है,
0: में डालना है
1: इसमें कुछ
0: खड़े पानी
1: और
0: में।
1: कुछ भी मिलाना है या कई बार तो देखा है कि बोतल वैसे सुराख करके ना उसने छिड़कते चल जा करें?
0: इसके तरीके सही तरीका तो ये है कि रेत में मिला के
1: हाँ
0: और पूरे खेत में भुरक दें।
1: जी
0: दूसरा तरीका ये है, उस बोतल की बजाय एक सेकर बोतल आती है, उसके अंदर सुराख ज़्यादा होते हैं, वो एकसार छिड़काव करती है, तो
1: जी
0: या फिर उस सेकर बोतल का प्रयोग करें, पानी में मिला के सेकर बोतल में डालें और फिर उसको डालें।
1: जी
0: सही तरीका रेत वाला है।
1: हाँ
0: उसके अलावा जैसे कई बार क्या होता है, आपके पास मोथा डिल्ला भी ज़्यादा है बरटा सामक के लिए, तो ये सही है दवाइयाँ,
1: बिल्कुल
0: तो उसमें एक इस प्रिटिला क्लोर के साथ ही एक और पायरज सल्फरॉन मिली हुई दवाई है, इरोस के नाम से आती है, तो वो दाणेदार है, 4 किलो डाल सकते हो, उसमें कुछ मिलाने की ज़रूरत नहीं है।
1: अच्छा,
0: तो सीधा ही 4 किलो दवाई को एक एकड़ में भुरक दो, तो उसमें आपके मोथा डिल्ला, चौड़ी पत्ती के और बरटा सामक सारे काबू में आ जाएंगे। कई बार क्या होता है कि आपने शुरू में दवाई डाली 3 दिन के अंदर, लेकिन उसके बाद भी कुछ खरपतवार आ गए, जैसे सपोज करो

0: पानी का प्रबंधन सही नहीं रहा या मौसम की वजह से किसी वजह से, तो अगर बर्टा सामक आता है तो एक बिस्पायरी बैक नाम की दवाई है नॉमिनी गोल्ड के नाम से, तो 100 मिलीलीटर प्रति एकड़ उसका स्प्रे कर सकते हैं 15 से 25 दिन के अंदर।
1: अच्छा,
0: और अगर चौड़ी पत्ती वाले और मोथा डिल्ला ये आ जाते हैं तो फिर हमारे पास दूसरी दवाइयाँ इथॉक्सी सल्फ्रोन है जैसे सनराइज के नाम से, या 2,4-D है या एलमिक्स है, तो इन दवाइयों का प्रयोग कर सकते हैं। एलमिक्स 8 ग्राम होगी, सनराइज 50 ग्राम होगी और 2,4-D 400 मिलीलीटर।
1: इस मीन में के कुछ मिलाना पड़ा डॉक्टर साहब, कोई पानी की मात्रा या कुछ?
0: ये 120 लीटर पानी प्रति एकड़ में घोल बना के और स्प्रे करना फुहारे से। ये जो जो भी दवाइयाँ हम 15 दिन के आसपास डालेंगे या 20 दिन के आसपास डालेंगे, ये सभी स्प्रे के द्वारा दी जाएंगी।
1: अच्छा, इसमें पानी पात का कैसे ध्यान रखना है? जो भी हम स्प्रे करें हैं तो खेत में कितना पानी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए?
0: इसमें बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल आपने किया कि जिस दिन स्प्रे करना है उस दिन पानी को निकाल दें
1: जी,
0: और एक दिन तक पानी उसमें ना दें, तो ताकि
1: छिड़काव
0: करने के एक दिन बाद तक पानी खड़ा ना रहे, उसके बाद आप पानी दे सकते हैं
1: जी।
0: तब तक दवाई अपना काम कर देगी।
1: मौसम का क्या प्रभाव पड़ेगा सब इस पर?
0: मौसम का इतना ही है कि जो स्प्रे किया है तो 8 घंटे तक बारिश ना हो, ये अपने को चाहे तो फोरकास्ट देख लें या अपना अंदाजा लगा के कि भाई बारिश का अंदेशा नहीं है। अगर 8 घंटे सही निकल जाते हैं तो फिर कोई डर की बात।
1: मौसम अगर साफ है तो बढ़िया असर,
0: मौसम साफ है तो बढ़िया काम करेगी। बारिश आ जाती है तो फिर वो रिपीट करना पड़ सकता है अगर जल्दी बारिश आ जाती है तो
1: जी।
0: इसके अलावा अगर हम अब शिफ्ट करते हैं जो सीधी बिजाई के लिए
1: जी,
0: उसके लिए जो नीचे डालने वाली दवाई है वो है पेंडीमेथिलीन।
1: पेंडीमेथिलीन
0: हाँ, वो स्टोम के नाम से आती है और भी कई नाम है, तो वो 1.3 लीटर यानी 1300 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से, और इसका स्प्रे होगा।
1: अच्छा,
0: इसको रेत में नहीं मिला सकते, किसी और तरीके से नहीं डाल सकते, स्प्रे होगा और 3 दिन के अंदर, बिजाई के 3 दिन के अंदर हमने इसको डालना है।
1: जैसे खेत में हमने सीधी बिजाई करी है तो 3 दिन के अंदर,
0: इसमें सीधी बिजाई के 2 तरीके हैं, जैसे एक तो 72 में बिजाई करते हैं और एक सूखे में बिजाई करके पानी देते हैं।
1: पानी देते हैं,
0: अगर 72 में बिजाई की है तो ये स्प्रे करना पड़ेगा पेंडीमेथिलीन का बिजाई के तुरंत बाद
1: जी,
0: उसमें 3 दिन नहीं कर सकते, तुरंत बाद। और अगर सूखे में बिजाई करते हैं तो फिर उसमें हमें स्प्रे करना 3 दिन के अंदर,
1: 3 दिन
0: जितना जल्दी करेंगे उतना बेहतर रहेगा
1: जी।
0: इसके बाद क्योंकि अकेले इससे खरपतवार नहीं रुकेंगे, तो इसके बाद 15 से 25 दिन के बीच में हमें दोबारा से वही दवाई जो उसमें बताई थी बिस्पायरी बैक नॉमिनी गोल्ड के नाम से
1: जी,
0: 100 मिलीलीटर प्रति एकड़ की दर से उसका स्प्रे करेंगे 120 लीटर पानी में मिला के, और वही बात कि जब स्प्रे करेंगे तो उस समय उसमें पानी नहीं खड़ा हो और एक दिन बाद फिर पानी लगाना है।
1: फिर पानी लगाना जी। और जो दूसरे इसमें खरपतवार आ जाए हैं इनके अलावा?
0: इसके अलावा जैसे और भी कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं, जैसे एक जो स्टोम्प हमने नीचे डाली, उस स्टोम्प जो पेंडीमेथिलीन है उसके साथ एक साल्ट और आता है पिनोक्सुलम
1: जी,
0: वो पिनोक्सुलम प्लस पेंडीमेथिलीन पेपे करके नाम से एक दवाई आती है, तो उसको अगर 1 लीटर स्प्रे कर देंगे शुरू में ही तो पेंडीमेथिलीन जिनको रोकती है, उसके अलावा अपने को जो मोथा घास आता है, डिल्ला घास आती है, वो भी और चौड़ी पत्ती वाले भी
1: जी
0: रुक जाएंगे
1: जी।
0: अगर फिर भी जमने के बाद भी फसल उगी है, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 25 दिन हो गए, बर्टा सामक नहीं है, मोथा डिल्ला भी नहीं है, लेकिन चौड़ी पत्ती वाले आ गए हैं
1: जी,
0: तो फिर उसके लिए वही दवाइयाँ जो मैंने उसके लिए बताई थी, रोपाई वाली धान एलमिक्स 8 ग्राम, सनराइज 50 ग्राम और 2,4-D 500 मिलीलीटर
1: जी,
0: तो इनमें से किसी भी एक दवाई का 120 लीटर पानी में घोल बना के और स्प्रे कर सकते हैं। तो हमें ये देखना है, मेन बात ये है कि अपने खरपतवारों को पहचानना है, नीचे डालने वाली दवाई दोनों में डालनी पड़ेगी।
1: अच्छा,
0: रोपाई वाली में बूटा क्लोर डालें, पिटला क्लोर डालें, और सीधी बिजाई वाले में पेंडीमेथिलीन।

0: डालें, ये अपने को डालनी है
1: जी।
0: उसके बाद जैसा खरपतवार है वैसी दवाई। अगर सामक है, बरटा है,
1: हाँ,
0: तो नोमनी गोल्ड, बिस्वायरी बैक, और अगर मोथा डिल्ला चौड़ी पत्ती के हैं तो एलमिक्स है, आपका 240 है, या सनराइज है
1: जी। यानी कि खरपतवार की पहचान होना बहुत जरूरी है।
0: ये
1: कई बार
0: सबसे
1: कह रहे हैं
0: जरूरी
1: कि हमें वैसे ही खरपतवार दिखाई दिए और हमने दवाइयों का उसमें छिड़काव करना शुरू कर दिया, ये खामखा का खर्च ज्यादा बढ़
0: वो
1: जाता है।
0: सही नहीं है। और ऐसा कई बार कुछ समझदार किसान हैं, उनसे भी गलती ऐसी हो जाती है कि वो पहचान नहीं कर पाते और देखते हैं कि ये उससे मिलता जुलता है, दवाई डाल दी, वो दवाई उस पर काम ही नहीं करती है,
1: जी।
0: तो उससे फिर वो है केमिकल का यूज़ बढ़ेगा और जो चीज़ चाहिए वो मिलेगी नहीं।
1: सही बात है,
0: तो
1: अनावश्यक
0: मैं
1: खर्चा
0: तो
1: बढ़
0: यही
1: जाएगा।
0: कहूँगा कि विशेषज्ञ से सलाह कर लें, विशेषज्ञ से टेलीफोन पे बात कर लें, आजकल तो व्हाट्सएप पे भी फोटो शेयर हो के और उससे भी बात हो जाती है,
1: जी
0: तो जो भी विशेषज्ञ से सलाह करके डालेंगे तो पैसा भी बचेगा,
1: हाँ,
0: पर्यावरण भी बचेगा, दवाई कम प्रयोग होगी, खर्चा भी कम होगा।
1: सही बात है डॉक्टर साहब। रोपाई करें हम धान की, तो इसमें यूँ का आग्रह कि भाई हफ्ता पानी खिड़ा रहने दें, फिर खरपतवार में कमी आ जाए, ऐसा कुछ है?
0: बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, अच्छे से पाड़े कटे हों और शुरू का एक हफ्ता 10 दिन पानी खड़ा रह जाए,
1: जी
0: तो आप ये मानिए कि आपने 2/3 समस्या आपके खरपतवारों की समाप्त हो जाएगी,
1: जी
0: उसमें दवाई का रोल बहुत ही कम रह जाएगा।
1: हाँ,
0: और ऐसा नहीं है कि दवाइयाँ, और ये परिस्थितियाँ कई बार ऐसी भी हो जाती हैं कि सब कुछ करने के बाद भी कुछ वीड बच जाते हैं।
1: जी
0: किसान भाई क्या सोचते हैं कि ये तो 20-30-50 पौधे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनसे, फ़र्क ये पड़ता है कि वो बीज बनाएंगे,
1: बीज बनाएंगे
0: अगले
1: उसका।
0: साल बीज उसी खेत में गिरेगा, अगले साल उनकी पीढ़ी आएगी और ज़्यादा आएगी, तो एक बार एक दिन हिम्मत करके एक आदमी 2-3 किल्ले का निकाल सकता है,
1: बिल्कुल
0: तो वो 20-30-50 पौधे उनको निकाल दें,
1: जी
0: वो तो एक हाथ से निकालना
1: हाँ।
0: ये भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर बीज बढ़ता ही चला जाएगा।
1: और के गलती आप भी कर जाए डॉक्टर साहब कि हाथ निकाले और हमने डोले पर रख दिए, मेड़ पर रख दिए।
0: वो भी है, उसको बाहर लेके आएं, पशुओं को चरा दें, या तो या उसको बाहर निकाल के और खेत के पास ना रखें।
1: बिल्कुल, और साटी दईसा घास से डॉक्टर साहब के इसका तो गाठिया में बीज पावे है,
0: वो
1: इसका तो
0: बीज
1: खत्म
0: बिल्कुल
1: होएगा
0: चला
1: नहीं
0: जाए,
1: दिंदा।
0: बिल्कुल सही बात है। और खरपतवारों के बीज तो ऐसा है कि जमीन के अंदर भी 20-20 साल तक
1: जी
0: पड़े रह जाते हैं, और इसलिए जितना बाहर निकल जाएगा बीज उतना ही बेहतर है।
1: सही बात है। इसकी शुरुआत में के थोड़ी सावधानी किसान भाई और बरत कर चल लें कि उनका खर्चा भी कम हुए और उनकी जो फसल है वह भी थोड़ी खरपतवार तो बची रहे।
0: एक चीज़ और मैं बताऊंगा, वो हालांकि अब तो रोपाई का समय चला हुआ है लेकिन आगे के लिए है, कि अगर हम हरी खाद के लिए ढैंचा लगाते हैं
1: जी जंतर।
0: तो, हाँ जंतर, तो वो ट्रायल हमने किए, हमारे पास एक 20 साल हमने कंटिन्यू ट्रायल किया, उसका डाटा ये कहता है कि जहाँ पे हरी खाद लगाई, जहाँ हरी खाद की, वहाँ पे खरपतवारों का जमाव बहुत ज़्यादा घट जाता है और
1: अच्छा।
0: फसल की पैदावार बढ़ती है, उसकी बढ़वार अच्छी होती है, खाद की मात्रा घटती है और वीड कम हो जाते हैं।
1: जी
0: तो उस विधि को भी हमने अपने धान के साथ ज़रूर शामिल कर लेना चाहिए कि हरी खाद लगाएं और स्टेल बेड का प्रयोग करें, जो अभी बात की थी हमने कि वीड
1: बाई
0: को
1: जो गर्मियों
0: बाई
1: का
0: कर
1: टाइम
0: दें,
1: है बिल्कुल
0: उसको
1: उसमें।
0: बाई कर दें और फिर अच्छे से पाड़े काटें और कुछ दिन तक पानी को खड़ा रखें
1: जी
0: और ज़रूरत के हिसाब से दवाई डालें,
1: हाँ,
0: और फिर ज़रूरत पड़े तो जो बचे हुए पौधे हैं उनको भी निकाल दें। तो ये चीज़ें हमें अगर करेंगे तो ये मान के चलो कि कम दवाई से, कम खरपतवार नाशक से अच्छी पैदावार ले सकते हैं और वीड्स का कंट्रोल हम बहुत बेहतर तरीके से ले सकते हैं।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब। और देखो बात करें हमें सीधी बिजाई की, इसमें खर्चे भी बहुत कम हो जाए हैं, और अब की बार तो देखने में आया कि कुछ रोजाना बढ़िया है क्योंकि पानी की भी कमी होती जा रही है। और एक किसान भाई थोड़ी गलती या कर दे हैं कि जीत अपने दौरे पानी पात के पूरे साधन नहीं है, नहरी पानी भी कम है, और ओरा की देखा देखी वो धान का लोभ कर दे हैं, धान की रोपाई करनी शुरू कर दे हैं, फिर नतीजा ये बना है कि धान की फसल कम

0: कमजोर, खरपतवार ज्यादा, पानी कभी आ रहा है कभी ना आ रहा, इसमें बड़ी दिक्कत आवे है।
1: देखिए, सीधी बिजाई के अंदर पानी की बचत है कम से कम 20 से 25% की तो है,
0: जी,
1: और अगर परिस्थितियां थोड़ी सी बेहतर हैं तो 30% 25-35% तक भी हो सकता है। तो ये मानिए कि हम जब सारी फसलें ड्रिल से बोते हैं, सिर्फ एक ये फसल है जो हम ऐसे ट्रांसप्लांट करते हैं
0: जी,
1: लेकिन ये फसल भी ट्रांसप्लांटिंग की बजाय ड्रिल से बोई जा सकती है। और पाड़े काटने से ज़मीन की सेहत ख़राब होती है
0: जी,
1: और पाड़े काटना एक अच्छी गतिविधि नहीं है, क्योंकि इससे मीथेन गैस निकलती है और वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है
0: जी।
1: तो अगर हम उधर शिफ्ट करेंगे तो ये मानिए कि हम अपनी आने वाली पीढ़ियां हैं उनका भी भविष्य संवार रहे हैं। ग्रीन हाउस गैसेज जो होती हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग जिसको बोल रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है,
0: हाँ,
1: और पानी जो कमी होने जा रही है, इन सब का समाधान इस धान की सीधी बिजाई में है। बस बात ये है कि ध्यान रखने वाली कि हमें विशेषज्ञ से सलाह करके अपनी विधि को समझ के और फिर बिजाई करें
0: जी,
1: क्योंकि अगर बगैर समझे चीज़ कर लेते हैं और फिर वीड आ गए, खरपतवार आ गए, फिर सोचता है पता नहीं क्या हो गया ये, तो फिर चीज़ें ऐसा लगता है कि मैंने कोई गलत विधि को अपना लिया
0: जी।
1: तरीके से करेंगे तो बहुत अच्छी विधि है।
0: और थोड़ा हाइप तो ऐसा हो रहा है डॉक्टर साहब के तरीके भी, और डॉक्टर साहब से सलाह लेकर अभी संचार के माध्यम भी इतने हो रहे हैं कि हम तुरंत सलाह ले सके हैं, घास फूस जो भी उगया है उसको दिखा कर ना भी उसकी दवाई का समाधान पा सके हैं।
1: बिल्कुल कर सकते हैं, और आजकल तो सोशल मीडिया भी इतना ज़्यादा है और टेलीफोन की सुविधा भी है और ट्रांसपोर्ट के साधन भी बढ़ गए हैं, कभी भी जाके और विशेषज्ञ से सलाह करें और अपना समाधान कराएं।
0: जी बिल्कुल।
1: तो अगर कोई विशिष्ट परिस्थितियां आती हैं, कई बार एक दो दवाइयां मैं और बताऊं आपको, अगर हर्बिसाइड की बात करें, कुछ ऐसे हर्बिसाइड भी हैं जो हमने टेस्ट भी किए हैं और रिकमेंडेशन में भी हैं कि शुरू में नहीं डाल पाए किसी वजह से दवाई, और बाद में पूछते हैं कि क्या करें, तो फिर उसके लिए हमारे पास एक काउंसिल एक्टिव के नाम से एक दवाई है, एक कोरियोन के नाम से एक दवाई है, एक विवाया के नाम से एक दवाई है
0: जी।
1: तो इनका प्रयोग करके हम सभी तरह के खरपतवारों को नियंत्रण में कर सकते हैं।
0: एक आखिरी सवाल है डॉक्टर साहब, जब हम कीटनाशक खरीदते हैं, ये कीटनाशक के खरपतवार नाशी खरीदते हैं, तो ये खरीदने में किसान भाई की क्या सावधानी बरतें?
1: एक तो यही बात कहूँगा कि जो टेस्टेड खरपतवार नाशक हैं, यूनिवर्सिटी द्वारा टेस्टेड हैं, जो पैकेज प्रैक्टिसेज में लिखे हुए हैं, उनको खरीदें, क्योंकि वो ऑलरेडी यूनिवर्सिटी ने टेस्ट किए हुए हैं। दूसरी बात, उनकी अच्छे पक्की रसीद लें उसको, ताकि कल को कोई शिकायत भी है तो आप उसका लीगल कार्रवाई भी कर सकें
0: जी।
1: और लेबल वगैरह देख के और उसकी एक्सपायरी वगैरह देख के उसको खरीदें
0: जी। डॉक्टर धर्मवीर यादव जी, आप स्टूडियो में आए, किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी कि अपने धान की रोपाई में से किस प्रकार खरपतवारों का नियंत्रण कर सके हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद बलजीत भाई जी।
2: भाइयों, ये तो आपने बातचीत सुनी धान फसल में खरपतवार नियंत्रण, क्योंकि देखो इसमें हर जगह अपने आप ये है, धान की फसल लगा रहे हैं और भी ज़्यादा लगाऊंगे, तो उसमें ये ध्यान रखें मैं अपने दवाई का जो लिया है उसमें कोई एक्सपायरी ना हो रही हो, और जितनी मात्रा बताई जाए उतनी मात्रा डालें। कई बार ऐसा होगा कि हो गया कि ज़्यादा डाल दें फिर ना, वरना ऐसा ना करें, उसमें काफ़ी तरह से आर्थिक नुकसान भी हो है और बात ये है पर्यावरण भी दूषित हो, तो इस चीज़ को ध्यान दें भाई। और बात ये मनोरंजन की है तो आपने रागनी सुनवाएंगे और पक्का साजगी सुनवाएंगे, गायक कलाकार हैं बलबीर सिंह बोबला।
3: बात उस मौके की है जिस टाइम पवन अपनी फौज को सजा कर लड़ाई करने के लिए चल देता है और रास्ते में फौज ठहर जाती है, रात का टाइम हो जाता है और चकवा चकवी बोलते हैं और पवन उनकी बातों को सुनकर अंजना की याद आ जाती है और क्या कहता है।

0: पेश है किसानों के लिए दुनिया का पहला तरल नैनो यूरिया इफको नैनो यूरिया। अब खेती की लागत कम, आधा लीटर बोतल में एक बोरी यूरिया का दम।
1: तो भाई ये बात है, आपने विज्ञापन भी सुन लिया, उससे पहले राग नहीं सुनी थी। और ही थोड़ा जिक्र करा, देखो मैं देखा अपने पशुओं की बात करा। हाँ, पशुओं को हरा चारा जिस तरह बता कि बहुत ज़रूरी, गर्मी थी, गर्मी में तो देखो इतना कम हो गया था, लेकिन ये एकदम उसकी अधिकता होगी। अधिकता में हमने ये ध्यान रखना कि भाई सारा ये नहीं करना कि हरा चारा डालते रहें उनका, थोड़ा सूखा चारा भी डालना बहुत ज़रूरी है पशु। नहीं तो क्योंकि ऐसा है, अकेला हरा चारा डालते रहोगे तो पशु है उसमें ओगर जाएगा, उसमें पसंद नहीं करेगा और उसके लिए मतलब नुकसान भी कर सके। तो इसलिए उसमें सूखा चारा मिलाना बहुत ज़रूरी है पशु के लिए। साथ में ही वे बरसात का मौसम आ गया और मक्खी मच्छर शुरू हो जाएंगे उसमें और हो ही रहे हैं उसमें, तो पशु तंग ना होने अपने मच्छरदानी का है उसका इंतजाम कर लें। आजकल खूब भाई इसके करें, नीचे गद्दे रखे हैं और मच्छरदानी उसमें करें, मच्छरदानी थोड़ा ऐसा करें जो खुली ही उसमें कर ले। नहीं तो ऐसा है कि वह पशु है उसने पाट देगा, सींगा मुड़ जा लेगा, कोई किसी उसमें है या जोड़ा जापटे मुड़ जा लेगा, तो इस और भी उसमें पूरा वो ध्यान रखें। साथ में कई भाई ऐसा करें कि वह भीतर बांध लें पशुओं ने और भीतर करके सारे दरवाजे वगैरह बंद करके धुआँ कर दें, तो उसमें भाइयों ये देखा गया है कि जो पशु है ना दम घुट सके, तो वो ध्यान हमने रखना है कि भाई उसमें वेंटिलेशन का तो काम रखना है। साथ में आजकल तो पंखे हैं,

और साथियों की गाई गुड़ पसंद भेजनिया है गांव पांडू पिंडारा जिला जींद ते हैं बादल सिंह गिल, कमलेश रानी गिल, टीनू प्रीति और अंकित गिल। यहीं से एक और चिट्ठी आई है और लिखने वाले हैं पंडित जगदीश, जय भगवान, राम भक्ति, सुरेंद्र पहले, हरी राम फौजी और किशन फ्रेंड्स कॉलोनी कैथल ते। ये हमारे श्रोता हैं रामफल मान, रामधारी मान, पाला राम मान, इंद्र सिंह मान, अनिल प्रवीण, दलजीत मान, पंडित ईश्वर सिंह और सत्यनारायण शर्मा। गांव बरौली ही जिला जीनते हैं हमारे श्रोता है सुरेंद्र सांगवान, सचिन और अंकित सांगवान। गांव भाणा ब्राह्मणते हैं ये हमारे श्रोता है मेघराज शर्मा, गौरव, सौरव, विजय, अजय, जितेंद्र और जोगेंद्र शर्मा। और गांव मुढलाना तहसील गोवाणा जिला सोनीपत हैं ये हमारे श्रोता है रामफल लाठवाल, दिनेश, नरेश, सतपाल, सुरेश, रणधीर, जसमेर, अजमेर, ईशांत, यश, लक्की और मयंक। तो सुना मेरा अग्नि बाबू रामदेव और साथियों की गायोड़।

भाई यार रागनी सुनी और अगली रागनी सुनवाओगे गायक कलाकार रहेंगे रणबीर सिंह बड़वासनिया और उनके साथी। पसंद भेजनिया है गांव हरिगढ़ तहसील सफीदों जिला जींद ते। दनपत लांबा, कृष्ण, रणबीर, धर्मबीर, कुलदीप, विजेंद्र, बबलू और लांबा परिवार। महमूदपुर रोड गोवाणा ते चिट्ठी लिखने वाले हैं पंडित प्रभुदयाल, विजेंद्र, दिनेश आजाद, लक्ष्य और रोबिन मुदगिल। ये चिट्ठी आई है इसराना जिला पानीपत। लिखने वाले हैं रमेश जागलान, चरण सिंह जागलान, लोकेश और धीरेन जागलान। आदर्श नगर मलोट पंजाब ते ये हमारे श्रोता है राज शर्मा, मीना, योगेश, सौरभ और उनके परिवार के सदस्य। और गांव बलियाली जिला भिवानी ते चिट्ठी लिखने वाले हमारे श्रोता हैं दर्शन लाल बंसल, सुदेश रानी, प्रवीण कुमार, ममता रानी, कमल कुमार, गर्विश और तमन्ना बंसल। तो सुनो मेरा रागनी रणबीर सिंह बड़वासनिया और साथियों की गायकी।

भाइयों अगली रागनी आपने सुनवाएंगे जगबीर सिंह बलंबिया और साथियों की गायगुड़। पसंद भेजनिया है गांव फराशी ते राजकुमार डूडी, सरजीत सिंह और प्रमोद कुमार। आशी शहर ते ये हमारे श्रोता है राजू मिगलानी, बबीता, सुभाष योगी, बब्बू और डब्बू। पटेल नगर पंजाब ते हैं डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी, गगनदीप और बेबी आरव जाजोरिया। गिड़काली मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से ये चिट्ठी डालने वाले हमारे श्रोता है कृष्ण पाल डबास, अनुज, राजेंद्र, अजय, नीटू और विनोद डबास। इडौन शहर जिला करौली राजस्थान से ये चिट्ठी आई और लिखने वाले खुशीराम, मोनू, विष्णु, दीपक, राहुल और रिंकू। और महेंद्रगढ़ से ये चिट्ठी आई है ममता गांधी, विकास गांधी, वंश, दिया, नोनू, शगुन और विमी गांधी की। तो सुनो ये रागनी जगबीर सिंह बलंबिया और साथियों की गायोड़।

और भाइयों कार्यक्रम के आखिर में आप नरागनी सुनवाओगे संदीप कुमार और साथियों की गाई ओड़ या रागनी पसंद भेजनिया है गांव गादी जनपद बागपत उत्तर प्रदेश से काशीराम दलाल बलदेव सिंह आर्य रामफल दयानंद धर्मवीर नितिन अर्पित हरिओम ओमपाल सन्नी निमेश अनुज और रिडकुमल छापरौली उत्तर प्रदेश से ही ये हमारे श्रोता है जसवंत सिंह खोकर राजकुमार अनिल सुनील कुमार प्रवीण कुमार सुमित और विनीत सिसाई जिला हिसार से अनूप दिनेश बलवान और बाली चमन रणधीर सुरेंद्र और दीपांशु गांव अजायब से ये हमारे श्रोता है सुबेदार मामन सिंह सावित्री देवी ऋषभ देव ऋषि देव नरेंद्र वीरेंद्र दविता अंजलि सागर और रोकी नैन गांव देवरड़ ते हैं श्री राम चहल वीर सिंह चहल मास्टर ओम बलवान धर्मचंद दया किशन काला राम और मास्टर रणधीर गांव लाट ते ये हमारे श्रोता है केशव नमन अनवी अवि कपूर सिंह कौशिक राजबीर फौजी नाना फौजी राजेंद्र रामफड़ और खेतुराम तो सुने भाई रागनी संदीप कुमार और साथियों की गायों

अयन रागनीशुनी गायक कलाकार थे संदीप कुमार और उनके साथी। और भाइयों ईब गड़ी कह रहे हैं, देख लो कार्यक्रम का समय हो रहा समाप्त। अशोक भाई ने इजाजत दो, सारे बाण भैया ने राम राम।

अभी आपने सुना कार्यक्रम ग्रामीण संसार। मीडियम वेव 262.67 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत कार्यक्रम में पहला नगमा लीजिए सुनिए जब वी मेट फिल्म से। उस्ताद राशिद खान की आवाज़ है, इरशाद कामिल के बोल, संगीत प्रीतम का।

उस्ताद राशिद खान की आवाज़ में आपने सुना जब वी मेट फिल्म का गीत। गीत के बोल रचे थे इरशाद कामिल ने, संगीत था प्रीतम का। कार्यक्रम का अगला गीत लीजिए सुनिए लव आजकल इस फिल्म से। आवाज़ है राहत फ़तेह अली खान की, गीतकार हैं इरशाद कामिल, संगीतकार प्रीतम।

रूप कुमार राठौड़ की आवाज़ में ये था रब ने बना दी जोड़ी फिल्म का गीत। जयदीप साहनी के बोल थे, संगीत था सलीम सुलेमान का। लीजिए सुनिए रहना है तेरे दिल में इस फिल्म का गीत बॉम्बे जयश्री की आवाज़ में। गीत के बोल रचे हैं समीर ने, संगीत दिया है हरीश जयराज ने।

बॉम्बे जयश्री की आवाज़ों में ये था रहना है तेरे दिल में फिल्म का गीत। गीतकार थे समीर, संगीतकार थे हरीश जयराज। लीजिए सुनिए केके का गाया जन्नत फिल्म से सईद कादरी का लिखा ये गीत, जिसे संगीत दिया है प्रीतम ने।

0: श्रेया घोषाल, सलीम मर्चेंट और साथियों की आवाज़ों में ये था कुर्बान फिल्म का गीत। निरंजन यंगर के बोल थे, संगीत था सलीम सुलेमान का। आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत।
1: अक्कान की फरमाइश बिल्लू मुन्नी और शम्स की रामपुर मेरठ और इटावा से, संगीत है सोहेल सेन का, बोल है डॉक्टर इरशाद कामिल के। पेश करते हैं हर आशिक के दिल को कुरेदने वाला गाना, कैसा ये इश्क है।

राहत फ़तेह अली खान की आवाज़ में आपने सुना मेरे ब्रदर की दुल्हन इस फिल्म का गीत। गीतकार थे इरशाद कामिल, संगीत था सोहेल सेन का। कार्यक्रम में आगे हम आपको सुनवा रहे हैं गजनी फिल्म का गीत, सोनू निगम और जावेद अली की आवाज़ों में, प्रसून जोशी के बोल, संगीत ए आर रहमान का।

लीजिए अब सुनिए तुम मिले फिल्म से के की आवाज़ में ये गीत, जिसे लिखा है सईद कादरी ने, संगीत है ए आर रहमान का।

तुम मिले फिल्म का गीत आपने सुना के की आवाज़ में। सईद कादरी के बोल थे, संगीत था प्रीतम का। कार्यक्रम का अगला गीत लीजिए, सुनिए के की ही आवाज़ में, काइट्स फिल्म से। इस गीत के बोल रचे हैं नसीर फराज ने, संगीत है राजेश रोशन का।

आइए अब सुनते हैं आज के फिल्म संगीत कार्यक्रम का अंतिम गीत। मोहित चौहान और सुजैन डी मेलो की आवाज़ें हैं। फिल्म का नाम है रॉकस्टार। इरशाद कामिल के बोल, संगीत AR रहमान का।

ये था आज के फिल्म संगीत कार्यक्रम का अंतिम गीत। मोहित चौहान और सुजैन डी मेलो की आवाज़ें थीं, इरशाद कामिल के बोल थे, संगीत था एआर रहमान का। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत।

0: आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। सुगम संगीत कार्यक्रम में हमारे आज के कलाकार हैं मेहदी हसन।
1: हिम्मत और हम सब आर्टिस्टों की हौसला अफजाई है कि इन्होंने हमारे प्रस्तार हमारे सुनने वालों तक एक सबब बनाया है क्लासिकल को रूशनास कराने के लिए, और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि फिर वही मेरी बात रिपीट कर रहा हूँ मैं कि हमारी मौसीकी में ज़िंदगी है। अगर ज़िंदगी न होती तो कहाँ गए वो आर्टिस्ट जो तूफ़ान की तरह आए थे और आंधी की तरह चले गए। लेकिन आज भी खासा गुलाम अली खान मरहूम अल्लाह बख्शे बड़े गुलाम अली खान अमीर खान और सब बड़े बड़े बुजुर्ग ये राग रंग वैसा ही का वैसा है। मालकौंस आज भी जब बुजुर्ग शुरू होते हैं तो लगता है कि अभी पैदा हुआ है, बोरियत नहीं होती उसमें क्योंकि उसमें ज़िंदगी है खुद। तो ये जय भाई के आइडिया को मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि सिस्टम बहुत अच्छा रखा है, तमाम अच्छे फनकारों को उन्होंने आज पेश किया और ख़ास तौर पे हमारा संगीत। शुक्रिया।

मियां की मल्हार है इसका गंधार, आंदोलन भी है और यूं कह लीजिए कि अति कोमल तंतीवर के दरमियान में है, न कोमल है न तीवर है, जो इस बाजे में नहीं है। इसमें हारमोनियम में, पियानो में, इनमें नहीं है वो सुर।

एक बस तो ही नहीं मुझसे खफा हो।

0: जी बता रहा हूँ हर मुझे एक बार खा साहब मेरा प्यार से मुझे डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे, मैंने कहा मैं यही चाह रहा हूँ उठ बैठ हो बना है।
1: ये थी आज के सुगम संगीत कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति। आज के इस कार्यक्रम में हमारे कलाकार थे मेहदी हसन। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8:45 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी समाचार, इसके बाद ठीक 9 बजे समाचार होंगे अंग्रेज़ी में जिन्हें रिले किया जाएगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न करने के बाद स्वदेश रवाना। कहा, दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते से भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर तेजी से बढ़ेगा। वियतनाम में नाव दुर्घटना में 15 भारतीयों की मौत। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने समान नागरिक संहिता के मसौदा विधेयक की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति का गठन किया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान। फीफा फुटबॉल विश्व कप में नॉर्वे और इंग्लैंड तथा मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबला। और तीरंदाजी विश्व कप के चौथे चरण में भारतीय महिला कंपाउंड टीम ने रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के सामने अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ऐतिहासिक 2 दिवसीय न्यूजीलैंड यात्रा पूरी कर भारत के लिए रवाना हो गए हैं। 4 दशकों से अधिक समय बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली द्विपक्षीय यात्रा रही जिसने दोनों देशों के संबंधों को नई गति दी। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच व्यापक वार्ता हुई। दोनों नेताओं की मौजूदगी में रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन तथा डेयरी एवं पशुपालन सहित 5 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री लक्सन ने भारत को न्यूजीलैंड का विश्वसनीय मित्र बताते हुए भारतीय समुदाय के योगदान और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री लक्सन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह यात्रा भारत न्यूजीलैंड संबंधों में नए अध्याय की शुरुआत है।
2: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, हवाएं हमारे साथ है, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है, पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूँ हम सफल होंगे।
1: मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसके अध्यक्ष होंगे। मेघालय के पूर्व राज्यपाल तथागत रॉय भी समिति के सदस्यों में शामिल हैं। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष सांसद पीपी चौधरी ने कहा है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने से शासन व्यवस्था मजबूत होगी, खर्च कम होगा और देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। गोवा में मीडिया से बातचीत में श्री चौधरी ने कहा कि सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करने वाली 41 सदस्यीय समिति सरकारों, राजनीतिक दलों, संवैधानिक विशेषज्ञों, नागरिक समाज और अन्य हितधारकों के विचार जानने के लिए राज्यों का दौरा कर रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट के आज वियतनाम के फुक्वोक द्वीप के पास पलट जाने से 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि मृतकों में 13 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मृतकों की सूची साझा करते हुए कहा कि ये नाम वियतनामी अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। दूतावास के अनुसार मृतकों में से 10 तमिलनाडु से, 3 आंध्र प्रदेश से और 2 केरलम से थे। नाव में 32 भारतीय पर्यटकों, 3 चालक दल के सदस्यों और 1 परिचारक सहित कुल 36 लोग सवार थे। 17 यात्रियों और चालक दल के 4 सदस्यों सहित 21 लोगों को बचा लिया गया और

0: अस्पतालों में भर्ती कराया गया। दो जीवित बचे लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है और उन्हें गहन चिकित्सा देखभाल दी जा रही है। एक रिपोर्ट।
1: 32 भारतीय पर्यटकों और 4 चालक दल के सदस्यों को ले जा रही यह नाव होन में रूत नोगोई द्वीप से लगभग 400 मीटर दूर पलट गई, जिसके बाद बचाव अभियान शुरू किया गया। हनोई स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि खोज और बचाव अभियान जारी है। कुछ घंटे पहले हुई इस दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। वहीं प्रभावित परिवारों को जानकारी और सहायता प्रदान करने के लिए हो ची मिन्ह सिटी स्थित भारतीय दूतावास में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। यहां 8-4-3-6-2-8-1-7-9-3-0-8-4-9-1-5-5-2-3-7-1-4 और 8-4-3-3-4-5-2-0-4-1-4 नंबरों से संपर्क किया जा सकता है। आकाशवाणी समाचार के लिए समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नागरिकों के साथ हुई इस दुखद नाव दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। अपने संदेश में उपराष्ट्रपति ने घायलों के शीघ्र और पूर्ण स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनों को खोने वाले परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने व्यक्तित्व निर्माण में पुस्तकालयों की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख करते हुए युवा पीढ़ी से पुस्तकालयों से जुड़ने की अपील की है। आज नई दिल्ली में जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का उद्घाटन करते हुए उन्होंने राष्ट्र निर्माण में पुस्तकालयों की भूमिका का उल्लेख किया और कहा कि वे आधुनिक शिक्षा के साथ साथ जन समुदाय में देश की संस्कृति और ज्ञान के प्रसार का सशक्त माध्यम हैं। एक रिपोर्ट।
2: केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय में 32,000 से अधिक पुस्तकों का संग्रह है। उन्होंने कहा कि पुस्तकालय में शोधकर्ताओं के लिए समर्पित सुविधाएं, एक आधुनिक बहुउद्देशीय सभागार, समकालीन पाठन क्षेत्र, बाल क्षेत्र, एक शोध केंद्र और 1 करोड़ ऑनलाइन पुस्तकों तक पहुंच प्रदान करने वाला एक ई पुस्तकालय मौजूद है। पुस्तकालय में हर स्थान पर मुफ्त वाईफाई उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि कई मॉनिटर भी लगाए गए हैं, जिससे आगंतुक अध्ययन के दौरान नोट्स ले सकते हैं, सामग्री डाउनलोड कर सकते हैं तथा अपने विचारों को और विकसित कर सकते हैं। पुस्तकालय अत्याधुनिक RFID आधारित पुस्तक प्रबंधन प्रणाली से सुसज्जित है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना ने देश भर में 2 लाख से ज्यादा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को ऋण मंजूर करने का अहम पड़ाव पार कर लिया है। योजना के अंतर्गत 20,300 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हुआ है और लगभग 11 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। नई दिल्ली में आज विशेष कार्यक्रम में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि ये उपलब्धि भारत की खाद्य प्रसंस्करण विकास यात्रा के अगले चरण के लिए मजबूत आधार है। श्री पासवान ने योजना के तहत मिलने वाली सीड कैपिटल की सहायता का भी उल्लेख किया। इसके माध्यम से 4,18,000 से ज्यादा स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की मदद की गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के नंदीगामा क्षेत्र में स्थित मेधा रेल कोच कलपुर्जा निर्माण सुविधा स्थल का निरीक्षण किया। 375 एकड़ भूभाग में फैली ये विशाल औद्योगिक इकाई रेलवे के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण प्रगति को प्रदर्शित करती है। अपनी यात्रा के दौरान श्री वैष्णव ने मेक इन इंडिया पहल के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में निजी क्षेत्र के उद्यमों को बढ़ावा देने संबंधी सरकार की वचनबद्धता पर बल दिया। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वैच्छिक परिवार नियोजन, जागरूक निर्णय और स्वस्थ परिवार समावेशी तथा सतत विकास की मजबूत नींव है। सोशल मीडिया संदेश में उन्होंने कहा कि इस वर्ष का विषय है मां और बच्चे के कल्याण के लिए गर्भधारण के बीच स्वस्थ अंतराल और नियोजित पितृत्व। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने विश्व जनसंख्या दिवस 2026 के अवसर पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सर्वोत्तम पद्धतियों पर मासिक वेबिनार श्रृंखला का शुभारंभ किया है। इस पहल का उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच स्वास्थ्य सेवा नवाचारों को साझा करना और उनका विस्तार करना है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज महाराष्ट्र के नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने बताया कि बैठक में वैकल्पिक जैव ईंधन तथा प्रदूषण मुक्त प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सड़क, रेल, विमानन और जल परिवहन को कार्बन न्यूट्रल बनाने के उपायों पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि सहयोग को और मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा 2026 भी अपनाई गई।
3: ट्रांसपोर्ट से

0: सेक्टर में विशेष रूप से हमारी रोड सेक्टर, रेलवे, जलमार्ग और एविएशन, एक क्षेत्र में कार्बन न्यूट्रल हम कैसे बने, अल्टरनेटिव और बायोफ्यूल का भी उपयोग कैसे करें और प्रदूषण से तो मुक्ति मिलेगी भी और उसके साथ साथ जो नई नई टेक्नोलॉजी है, इनोवेशन है, रिसर्च है, अलग अलग ब्रिक्स देशों में एक दूसरे में कैसे कोऑपरेशन करें, कोऑर्डिनेशन निर्माण करें, इसके बारे में एक रेजोल्यूशन पास हुआ है और उसमें आगे की नीति भी तय हुई है।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिनों में देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इन इलाकों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और ओडिशा शामिल हैं। इस बीच विभाग ने कल असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम और बिहार में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2-3 दिनों में बारिश वाले इलाकों के साथ साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान आने की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश में कल लू की स्थिति हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के फिर से सक्रिय होने के बाद महाराष्ट्र में खरीफ फसल की बुआई में तेजी आई है। कृषि आयुक्त कार्यालय के अनुसार 6.51 हेक्टेयर पर बुआई पूरी हो चुकी है। इस बुवाई में 7 जुलाई तक गन्ने को छोड़कर राज्य के 14.44 करोड़ हेक्टेयर औसत क्षेत्र के 45% हिस्से को सम्मिलित किया गया है। गन्ने की खेती सहित 6.58 करोड़ हेक्टेयर में बुवाई और रोपाई का काम पूरा हो चुका है। ये कुल क्षेत्र का 42% है। तूफान बावी के चीन के पूर्वी तट की ओर बढ़ने के कारण चीन में एहतियातन 6 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। ये तूफान जापान के साकिशिमा द्वीपों और उत्तरी ताइवान से गुजरने के बाद अब चीन के लिए खतरा बना हुआ है। मेघालय अनानास महोत्सव 2026 का चौथा संस्करण नई दिल्ली के दिल्ली हाट में शुरू हो गया है। इसमें बाजार संपर्क को बढ़ावा देने के लिए राज्य के अनानास उत्पादकों को प्रदर्शित किया जा रहा है। और अब खेल खबरें। फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। दूसरे मुकाबले में कल सुबह 6:30 बजे मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। फ्रांस और स्पेन पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। भारतीय तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेन्नम, प्रीतिका प्रदीप और चिकिता तनिपार्थी की टुकड़ी ने आज तीरंदाजी विश्व कप के चौथे चरण में रजत पदक अपने नाम किया। टीम को महिला कंपाउंड टीम स्पर्धा के फाइनल में कोलंबिया से हार का सामना करना पड़ा। वहीं प्रीतिका प्रदीप ने व्यक्तिगत महिला कंपाउंड में कांस्य पदक जीता। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में चेकिया की कैरोलिना मुखोवा और लिंडा नोस्कोवा आमने सामने हैं। वहीं पुरुष डबल्स के फाइनल में ब्रिटेन के हेनरी पैटन और फिनलैंड के हैरी हेलियावारा ने क्रोएशिया के मटे पाविक और अल साल्वाडोर के मार्सेलो अरेवालो की जोड़ी को 7-6, 7-6 से हराकर पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम किया है। भारत ने इंग्लैंड के साथ 5 T20 मैचों की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला साउथहैम्पटन में जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 16 ओवर में 1 विकेट पर 210 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड ने श्रृंखला में 3-0 की अजेय बढ़त हासिल कर रखी है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम और इंग्लैंड के बीच एकमात्र टेस्ट मैच लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर खेला जा रहा है। दूसरे दिन आज भारत ने अपनी दूसरी पारी में ताज़ा समाचार मिलने तक बिना विकेट गवाए 42 रन बना लिए हैं। इससे पहले इंग्लैंड की पहली पारी 170 रन पर सिमट गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न करने के बाद स्वदेश रवाना। कहा, दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते से भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर तेजी से बढ़ेगा। वियतनाम में नाव दुर्घटना में 15 भारतीयों की मौत। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने समान नागरिक संहिता के मसौदा विधेयक की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति का गठन किया। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में नॉर्वे और इंग्लैंड तथा मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबला। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक फिल्म से। इस कार्यक्रम में हमारी आज की फिल्म है काबिल। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत जुबिन नौटियाल और पलक मुच्छल की आवाज़ों में।

इस गीत के साथ ही संपन्न होता है कार्यक्रम एक फिल्म से। आज इस कार्यक्रम में आपने सुने काबिल फिल्म के गीत। सन 2016 में पर्दे पर आई इस फिल्म के गीत रचे थे आनंद बख्शी, मनोज मुंतशिर और नासिर फराज ने। संगीत दिया था राजेश रोशन ने। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। रात्रि के 9:30 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम, जिसे हम रिले कर रहे हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

संस्कृति भारती में आपका स्वागत है। मैं हूँ नवोदिता। वर्षा भारत के लिए केवल एक

0: बल्कि नवजीवन का उत्सव है। बादलों का आगमन, धरती की सोंधी गंध, खेतों की हरियाली और लोकगीतों की स्वर लहरियां, ये सब मिलकर हमारी सांस्कृतिक स्मृति का हिस्सा बनते हैं। भारतीय मनीषा ने जल को सदैव जीवन का मूल माना है। ऋग्वेद का ये मंत्र कहता है, आपो हिष्ठा मयो भुवाः, यानी जल ही सुख, समृद्धि और कल्याण का स्रोत है। यही कारण है कि भारत ने जल का केवल उपयोग नहीं किया, उसका सम्मान भी किया। कहीं बावड़ियां बनी, कहीं तालाब, कहीं कुंड, तो कहीं मंदिरों के सरोवर। वर्षा की हर बूंद को संजोना हमारी जीवन पद्धति का एक हिस्सा ही था। आज परिस्थितियां थोड़ी बदल रही हैं, तो कहना चाहिए बदल चुकी हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा का स्वरूप भी बदला, कहीं अतिवृष्टि, कहीं अल्पवृष्टि और कई क्षेत्रों में लगातार गिरता भूजल स्तर, ये संकेत हमें सचेत करते हैं कि जल संरक्षण अब विकल्प नहीं, आवश्यकता है। इसी सोच को जन भागीदारी का स्वरूप देने के उद्देश्य से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर कैच द रेन अभियान प्रारंभ किया गया। इसका संदेश है, कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, यानी जहां भी वर्षा हो, जब भी वर्षा हो, उसकी प्रत्येक बूंद को सहेजिए। प्रधानमंत्री ने मन की बात के अनेक संस्करणों में भी जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का आग्रह किया है। उन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों में तालाबों के पुनर्जीवन, वर्षा जल संचयन और सामुदायिक प्रयासों के प्रेरक उदाहरणों का उल्लेख करते हुए कहा है कि जल संरक्षण तभी सफल होगा जब ये शासन का नहीं, समाज का संकल्प बने। ये अभियान वस्तुतः आधुनिक भारत को उसकी ही प्राचीन जल संस्कृति से जोड़ने का एक अद्भुत प्रयास है। बारिश की हर बूंद प्रकृति का उपहार है। उसे सहेजना केवल पर्यावरण की रक्षा नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति के उस मूल भाव का सम्मान भी है, जो हमें सिखाता है कि प्रकृति से जितना लें, उतना उसे लौटाएं भी। प्रकृति के प्रति श्रद्धा भारतीय संस्कृति को उसकी अनोखी अनूठी पहचान देती है। यही सांस्कृतिक चेतना हमारे पर्वों में भी दिखाई देती है, हमारे उत्सवों में भी दिखाई देती है, जहां आस्था और लोक जीवन एकाकार हो जाते हैं।
1: यो यो यो जोगनाथ चढ़ी नंदी।
0: इसी क्रम में पुरी की विश्व विख्यात श्री जगन्नाथ रथ यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भारतीय सांस्कृतिक समावेशिता, लोक आस्था और शिल्प परंपरा का एक अद्भुत उत्सव है। और इसी पर केंद्रित है हमारी अगली प्रस्तुति, नित्य नीलाचल।

0: जैसा शरीर वैसा देव, अर्थात शरीर के लिए जो आवश्यक है देव पूजन भी उसी विधि के अनुसार होना चाहिए। इस भावपूर्ण विचारधारा का प्रतीक है उड़ीसा के पुरी में अनुष्ठित हो रही यह नवदिनात्मक यात्रा। भक्त और भगवान के बीच सारे व्यवधान को तोड़कर प्रभु बलभद्र, देवी सुभद्रा और प्रभु श्री जगन्नाथ रथारूढ़ होकर रत्न वेदी को छोड़कर पुरी बड़दांड में यात्रा करते हैं। श्री गुंडीचा मंदिर में 7 दिन रहकर बाहुड़ा यात्रा में भाई बहन श्री मंदिर को वापस आते हैं। यह यात्रा भाव की यात्रा है, समन्वय की यात्रा है। कठोपनिषद में कहा गया है, आत्मानम रथिनम विधि शरीरम रथमेवतु। रथ यात्रा की महानता के बारे में गवेषक अशोक पांडे कहते हैं,
1: भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा प्रतिवर्ष आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को बड़े आकार में अनुष्ठित होती है। प्रत्येक वर्ष सरस्वती पूजा यानी वसंत पंचमी से काष्ट संग्रह का कार्य शुरू होता है। रथ निर्माण में लगभग 200

0: पांच प्रकार की सेवाएं कार्य करते हैं।
1: साल में एक बार अनुष्ठित इस रथ यात्रा की प्रस्तुति बहुत पहले से होती है। श्रीनगर के सम्मुख स्थित रथ खला में पवित्र अक्षय तृतीया से ही रथ का कार्य आरंभ हो जाता है। इसमें विश्वकर्मा महाराणा, रूपकार, चित्रकार, भोई सेवक, करतिया सेवक, ताम्र विशोई, ओझा महाराणा और अन्य सेवक हिस्सा लेते हैं। रथ निर्माण के परंपरा के ऊपर प्रकाश डालते हुए पुरी के मुख्य विश्वकर्मा सेवक विजय कुमार महापात्रा जी का कहना है,
2: मैं नंदीघोष रथ का मुख्य महाराणा सेवक हूँ। 1971 से हम एक कार्य कर रहा हूँ। भवन जी जो रथ का काम होता है ना, ये हर साल बैसाख महीने अक्षय तृतीया तिथि से शुरू होता है और आषाढ़ श्रीगुंडीचा के पहला दिन नेत्रोत्सव के दिन समाप्त हो जाता है। तीनों रथ में सबसे प्रथम का लकड़ी है फांसी। फांसी का लकड़ी इस्तेमाल किया जाता है। फांसी, इसके बाद ढोरा और एक लकड़ी है, इसका नाम है असन। फांसी, ढोरा, असन की लकड़ी में ये तीनों रथ निर्माण किया जाता है और मही सिमली का लकड़ी में ये निर्माण किया जाता है। हमारा विश्वकर्मा के साथ सहयोग करने के लिए अर्थात लकड़ी को उठाने के लिए भोई सेवक है। इसके बाद लोहे का काम करने के लिए कमार सेवक है और चित्र का काम करने के लिए चित्रकार सेवक है, रूपकार सेवक है, लकड़ी में रूप देता है। महाराणा, भोई, कमार, रूपकार, चित्रकार सेवक के द्वारा यही रथ का कार्य संपन्न होता है। अक्षय तृतीया तिथि से जब भगवान जगन्नाथ जी का रथ का कार्य शुभ दिया जाता है, इसके बाद रथ का काम शुरू होता है। इसके बाद ये जो नृसिंह चतुर्दशी तिथि आता है और एक काम जोड़ दिया जाता है, इसका नाम है गुज्जर। जगन्नाथ जी का चंदन यात्रा होता है ना अक्षय तृतीया तिथि से, जो भोर तिथि आएगा चंदन यात्रा के आखिरी दिन, आखिरी दिन में दोनों पहियों में एक अक्ष संयोग किया जाता है। प्रभु के आज्ञामाल आने से बाद हर कार्य यहाँ पर प्रभु के आज्ञा से होता है। अक्षय तृतीया तिथि से प्रभु आज्ञा देता है, मेरा रथ को शुभारंभ करो। इसके बाद रथ का कार्य शुभ किया जाता है। भौरी तिथि में प्रभु आज्ञा देंगे, मेरा रथ को खड़ा करो। इसके बाद दोनों पहिया में एक अक्ष संयोग किया जाता है। नेत्रोत्सव तिथि से प्रभु आज्ञा देंगे, मेरा रथ को मेरे दरवाजे पर लाओ। आज्ञा माल आने से बाद खींच के ले जाएंगे प्रभु दरवाजे पर। जगन्नाथ जी का रथ सबसे बड़ा है और बलभद्र जी का रथ जरा छोटा है, सुभद्रा माई का रथ सबसे छोटा है। जगन्नाथ जी का रथ में 16 पहिया लगता है, बलभद्र जी का रथ में 14 पहिया लगता है और सुभद्रा माई का रथ में 12 पहिया लगता है। इस तीनों रथ ऐसे बना जाता है और कोई जगह में इसी तरह रथ नहीं बना जाता है।
1: श्री क्षेत्र धाम में भक्त के साथ भगवान के अपूर्व मिलन के दो मुख्य यात्राएं होती है, पहला स्नान यात्रा, दूसरा गुंडीचा यात्रा। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन मंदिर के स्वर्ण कुएं से 108 घड़े जल से श्री बलभद्र, देवी सुभद्रा, श्री जगन्नाथ और श्री सुदर्शन को स्नान कराया जाता है। इस दिन प्रभु श्री जगन्नाथ गजानन वेश धारण करते हैं। आषाढ़ कृष्ण प्रतिपदा से तीनों ठाकुर अणसर घर में रहते हैं। इस समय अणसर घर की पट्टी में तीनों ठाकुरों की एक चित्रपट की पूजा की जाती है, इसे पट्टदिया कहते हैं। दैतापति सेवक हलधर दास महापात्र के अनुसार,
3: मैं हूँ हलधर दास महापात्र, बलभद्र जी का 12 ग्रही दैतापति हूँ। प्रभु स्नान का बाद में अंदर जाते हैं, हमारा सेवा शुरू होता है, श्रृंगार करते हैं, बेस करते हैं। रात को समय भगवान अनसर पिंडी को चल जाते हैं। ये सेवा हमारा अमावस्या तक सेवा होता है। ये सेवा 15 दिन में चलते हैं। यहाँ अनुसर का घर में शुक्ल वस्त्र परिधान होगा और शुक्ल फूल लगी होगा। एकादश का दिन महाप्रभु जो की रंगीन परिधान होगा। आयुर्वेद पथी पांचन होता है, आम, केला, पनस, सपुरी, सपटा, ये 5 प्रकार फल होता है, पथी होता है, मूंग और नारियल का कोरा, जल, लवंग, जायफल दे के, चंदन दे के इसको पानी खिलाते हैं और पान भी खिलाते हैं। जितना शब्द होता है कीर्तन का, भजन का, जो बाजा सब गाना होता है मंदिर का अंदर में कुछ चलेगा। सुस्त होने के बाद में रथ यात्रा होगा, द्वितीया तिथि में रथ का ऊपर जाएगा।
1: अणसर खत्म होने के बाद प्रभु आरोग्य लाभ करते हैं। साधारण मनुष्य के जीवन में जो घटित होता है वही श्री मंदिर में भी होता है।

0: अणसर के बाद मित्रोत्सव, उसके बाद रथ यात्रा। ताल ध्वज, देवदलन और नंदी घोष तीनों रथ सुशोभित होकर सिंह द्वार के सम्मुख प्रभु की प्रतीक्षा करते हैं। धाड़ी पहंडी में कब आएंगी चतुर्धा मूर्ति?
1: रथखला से तीनों ही रथ सज धज करके तैयार करके लाए जाते हैं और श्री मंदिर के महाद्वार के ठीक सामने उत्तर दिशा की तरफ मोड़ करके खड़ा कर दिया जाता है। ऐसे में भगवान जगन्नाथ अपने रत्न वेदी का त्याग करके बाहर निकलते हैं और पहंडी विजय करते निश्चलानंद सरस्वती महाराज अपने परिकरों के साथ तीनों ही रथों का वे अवलोकन करते हैं और रथों पर जाकर के अपना आत्मनिवेदन चतुर्धा देव विग्रहों को देते हैं। उनके वापस आने के बाद सीधे श्री नाहर से पुरी के गजपति महाराज भगवान जगन्नाथ के प्रथम सेवक तीनों ही रथों पर वे सोने के मुठ वाले झाड़ू से छेरा पोरा करते हैं और इस तरह से भगवान जगन्नाथ जब जाते हैं अपने गुंडीचा घर में जाकर वहां 7 दिन तक विश्राम करते हैं, उसको गुंडीचा महोत्सव कहते हैं।

0: रथ यात्रा की समाप्ति बाहुड़ा यात्रा में होती है। यात्रा तो समाप्त हो जाती है, पर प्रभु की अनंत लीला सिमंदिर के रत्न सिंहासन में चलती रहती है। सिमंदिर के शिखर पर पतित पावन की ध्वजा लहराती रहती है। उसी ध्वजा में सारे विश्वास का समन्वय होता है। ऐसा लगता है जैसे सबकी सांसें तरंगित हो रही है महोदधि में। और कभी इस दृश्य को शब्दवद करते हुए भाव विभोर होके गाने लगते हैं, देखो ये नित्य नीलाचल सभी तीर्थों का संगम स्थल, देखो ये नित्य नीलाचल सभी तीर्थों का संगम स्थल।
1: ये था लघु रूपक नित्य नीलाचल। मूल उड़िया आलेख तरुण कांति राउत का था, जिसका हिंदी अनुवाद किया डॉक्टर रश्मि रेखा जिन्ना ने। वाचन और प्रस्तुति थी प्रज्ञा पारमिता साहू की। आकाशवाणी कटक से। भारत की सांस्कृतिक विविधता का एक सुंदर पक्ष ये भी है कि यहाँ ऋतुएं केवल मौसम नहीं बदलती, बल्कि अपने साथ स्वाद, रंग और उत्सव भी लेकर आती हैं। इसी स्वाद और विरासत की एक अनूठी झलक मिलती है दिल्ली में हर साल आयोजित आम महोत्सव में। यहाँ देश के अलग अलग राज्यों से लाई गई सैकड़ों किस्मों के आम न केवल प्रदर्शित किए जाते हैं, बल्कि भारतीय बागवानी, कृषि अनुसंधान और फल संस्कृति की समृद्ध परंपरा का भी परिचय कराते हैं। पत्रिका में हमारी अगली प्रस्तुति है इसी आयोजन पर। ये आम कुछ खास है।
2: मैं डॉक्टर एके सिंह, एक्स प्रिंसिपल साइंटिस्ट, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, और मैंगो के विषय में आपको ये बताना चाहूँगा कि आम महोत्सव जो हमारा करने का जो उद्देश्य होता है वो होता है कि हम पूरे कंट्री से सभी जगहों पे एक दूसरे को एक मिठास के रूप में एक परिचित करा सकें। और चूंकि एक आम ऐसा फसल है जो कि ट्रॉपिकल से लेके सब ट्रॉपिकल रीजन माने उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, हर जगह उगाया जाता है। केवल अंतर ये होता है कि हर जगह की जलवायु में प्रजाति विशेष का विशेष महत्व होता है, और उस सूक्ष्म जलवायु में जो क्षेत्र विशेष का होता है उसमें आम का स्वाद अलग ही होता है। तो हमारा उद्देश्य होता है कि हर क्षेत्र के आम यहाँ पे आए और वो अपनी मिठास पूरी जनता के बीच में ले जाए और जनता सभी प्रजातियों के बारे में जान सके कि उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व से लेकर पश्चिम तक कौन सी प्रजातियां उगाई जाती हैं। इस बार देखिए वैसे तो आए थे 20 पार्टिसिपेंट्स ऐसे आए थे जो ग्रोवर्स थे, और 6 पार्टिसिपेंट्स ऐसे आए थे जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थे, और वो हमने कवर किया था उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, दिल्ली, तो 5-6 स्टेट ही हमने पूरा कंप्लीट कवर किया।
3: डॉक्टर नितेंद्र विक्रम सिंह है, प्रधान वैज्ञानिक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से। हमारे पास हमारे संस्थान से विगत 15 वर्षों में लगभग 10 संकर किस्में विकसित की गई हैं आम की। पूसा सूर्या है, पूसा

0: उषा सूर्या एक सिलेक्शन है, बाकी सारी संकट इसमें है। अरुणिमा है, आपका प्रतिभा है, श्रेष्ठ है, पीताम्बर है, लालिमा है, अभी रिसेंटली हमने दीपशिखा भी रिलीज की है। मोस्टली अमरपाली और संचेषण के संकरण से बना है, पर कुछ किस्में जिसमें दशहरी और लाल सुंदरी भी सम्मिलित। जैसा आप सभी देखते हैं, ऐसे आम महोत्सव यहाँ चल रहा है और आम के नाम पे देखे दिल्ली की जगह में कितने लोग, कितनी भीड़ यहाँ उमड़ी। आम केवल एक फल नहीं है, आम एक इमोशनल कनेक्शन है लोग। जैसे आप यूपी की बात कर लें तो वहाँ दशहरी है, आप वेस्ट बंगाल की बात कर लें वहाँ मालदा बहुत फेमस है, बिहार में जरदालू है, किशनभोग है, आप साउथ में चले जाए, आंध्र में चले जाए तो वहाँ बैगना पल्ली है, महाराष्ट्र में चले जाए तो अल्फांसो है, गुजरात में केसर है। तो ऐसे ही विभिन्न किस्में हैं जो मिठास अपने स्वाद से लोगों को एक दूसरे से जोड़ती है।
1: मेरा नाम भरतराज सिंह यादव है, मैं एमपी कठियोड़ा से आया हूँ। ऊर्जा ये साइज में सबसे बड़ा, इंडिया का सबसे बड़ा आम है और ये हमारे कठियोड़ा में होता है, हमारे गांव में। और भी बहुत सारी वैरायटीज है लेकिन हमारे सीजन अभी खत्म हो चुका है तो हम लोग इतनी लेके आए।
2: मेरा नाम रामकिशोर मौर्य है, मैं मलिहाबाद लखनऊ से हूँ। हमारे यहाँ अनेक प्रकार की प्रजातियों के आम पाए जाते हैं जिनको लोग जानते नहीं, इसलिए दिखाने के लिए कि लोग जाने पहचाने। हम अकेले 250 वैरायटी यहाँ आम की वैरायटी प्रस्तुत किए हैं, जिसमें खट्टे मीठे हैं और कुछ चूस कर खाने वाले हैं, कुछ काट के खाने वाले हैं, कुछ अचार की वैरायटियाँ विशेष कर, जो कि सभी प्रजातियों का अपना एक अनूठा स्वाद है, ताकि इन लोगों को मार्केट में जहाँ भी दिखे उनका स्वाद ले और खाए, तभी उसके बाद हमारे किसान की आमदनी बढ़ेगी। जो हमारी पुरानी हमारे पैतृक वैरायटियाँ है वो जीवित रहने, अन्यथा विलुप्त हो जाएंगी।
3: मैं कदीम चंदन नर्सरी मलिहाबाद लखनऊ से आया हुआ हूँ। मेरा नाम शेख शादाब अली है, मेरा पुरखों से काम चला आ रहा है नर्सरी का, जो अलग अलग वैरायटी को डेवलपमेंट करते हैं, तैयार करते हैं, पौधे नए नए निकालते हैं। हमारे पास तमाम सी वैरायटी हैं, सुरखा बर्मा है, गुलाब खास है, हुसनारा है, दशहरी है, राम केला है, जन्नत पसंद है, साजिद पसंद है, बनारसी है, रस कपूर है, तमाम सी वैरायटी, इतनी वैरायटी है कि यहाँ पे आपको हम गिनाते हुए थक जाएंगे। अदर सी तमाम सी ऐसी वैरायटी है जो आप एक दूसरे को मिलाती है, उसकी मिठास इतनी मिठास होती है जो दिल को खुश कर देती है और दिलों में मोहब्बत पैदा कर देती है। जो भी आम खाते हैं और दिल से हमको दुआएं देके जाती
4: है। ये आम कुछ खास हैं। दिल्ली के वार्षिक आम महोत्सव के बहाने भारत की फल समृद्धि, कृषि परंपरा और विविधता की रोचक यात्रा अभी आपने सुनी। सहयोग श्रीनाथ दीक्षित का था। भारत की सांस्कृतिक धरोहर केवल परंपराओं से नहीं, उन कलाकारों से भी समृद्ध होती है जो अपनी साधना से लोक और शास्त्र के बीच एक सेतु बन जाते हैं और देह के परे जाकर समय पर अपने हस्ताक्षर अंकित कर देते हैं। दुख की बात यह है कि बीते कुछ समय में ऐसी ही दो विशिष्ट विभूतियों ने इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया। सबसे पहले बात लोक गाथा की विश्व यात्री पद्म विभूषण तीजन बाई की। छत्तीसगढ़ की लोक गाथा पंडवानी को गांव की चौपाल से अंतरराष्ट्रीय मंचों तक पहुंचाने वाली तीजन बाई ने अपने सशक्त गायन, प्रभावशाली अभिनय और अद्भुत कथन शैली से लोक कला को नई पहचान दिलाई। उन्होंने परंपरागत सीमाओं को तोड़ते हुए पंडवानी की कपालिक शैली को अपनाया और अपनी अनूठी प्रस्तुति के माध्यम से भारतीय लोक नाट्य को विश्वव्यापी सम्मान दिलाया। उनके स्वरों में लोक जीवन की मिट्टी, महाभारत की कथा और भारतीय लोक संस्कृति की आत्मा एक साथ सुनाई देती है। सुनते हैं तीजन बाई से आकाशवाणी रायपुर के लिए रिकॉर्ड किया गया उनका एक पुराना साक्षात्कार।

पाटा नटारी हमारे ध्रुव उहे के जन्मे मो कुछ दिन हम अटारी में रहें, फिर हमला छोटपन में पकड़ के गनियारी में ले आईस। वहाँ हमार लालन पालन हुईस। हमार माँ के नाम सुखबती और पिताजी के नाम छनुकलाल रही से। छह भाई बहनी रहे हैं, दो भाई चार बहनी। गरीब होने के नाता

ऐसे गुजारत बहुत दिन ले चलत रही से। अब जब मैं बड़े लड़की हूँ तो संज्ञान हो गए तो लोग लड़का ला छोड़ के चल देवे, भाई बहनी मन के पूरा देखभाल ला मैं करूँ। हमन छयो भाई बहनी में कोनो पढ़े लिखे नहीं है। हमार दाई है बांस गीत गावे और हमार बाबू बांस बजावे। माँ के साथ गुनगुनाए के जो आदत पड़ीस तो ऐसे पड़ीस कि वो एकदम लट लग गए। लट लगे तो मैं कर्मा ददरिया सुआ पड़की बांस गीत गा लेते रहे हूँ। माँ गावे आर

बाटी भोरा भी अब्बड़ खेलत रहे हूँ, कबड्डी खेलत रहे हूँ, सूर खेलत रहे हूँ, खो खो खेलत रहे हूँ। तो रास्ता में मोर नाना के घर पड़त रही से, छोटे नाना के दनियारी गांव में, तो छोटे से नौकर झोपड़ा रही से, ते में भीतर में बैठ के पंडवानी के गायन गात रही से। बिजलाल पारधी मोर नाना जी के नाम, और वो ऐसे टेर लगाई द्रौपदी बन के श्री कृष्ण जिला, तो वो आवाज सुने के बाद तो मोर रोम रोम एकदम खड़ा हो गई। अरे बाप रे, हाथ कतेक सुंदर एकर आवाज, और कतेक बढ़िया भगवान ल पुकारत है। और एला लोग मन हा बिजलाल नाम रही से, पर भगवान के नाम जपे ना तो ओला जपरी कहा भी। 11-13 के लगभग में रही हूँ मैं, तो ये बच्चा कतेक सुंदर एकर दिल में लगाव है। तो सुने पर आते की वो छोटे से चटाई निकाली, सो कथे में बैठ बेटा, इमें बैठ। कतका कन सुने ऐसे की कही, तो एक हफ्ता के जतका कहानी सुनाए रही से नहीं, तेला 5-10 मिनट में खत्म कर दियो। तो नाना के आंखी में आंसू आ गए। उसी समय वो बोली कि बेटा, मोर घर में हीरा है हे प्रभु, और मैं नहीं परखे सके हूँ इसे की। आज भी गुंजा थे, टेर के आधार पे ही मैं टेर लगा था जब पंडवानी गाता हूँ। तो

गदगद कर देती। ऐसे लग जाती कि हम धरती में नहीं कि स्वर्ग में हनका, ऐसे लागते मोर मन लागते भाई। जब अच्छा कथा में हम डूब के उन मन ला सुनाथन और उन मन कोई कोई जगह रोए धोए के बात है, वो मन रोना शुरू कर देते, हम उसका सम्मान पाके अपन आप ला हम पूरा उकरे ऊपर अर्पण कर देथन। ते हमला कैस कौन सी मिट्टी बना के हमला भेजी, इकर से हमला सब लोग ले सम्मान और प्यार मिला थे, ये में अब बड़ा आनंद आते। आज भी वही है, अब आगे बढ़ मालिक के हाथ।

मैं तो एक तो नारी हूँ है ना, और नारी के पात्र कहे माँ मोला कोई कष्ट नहीं पड़े और आनंद आते ज्यादा, पर जब भीम के रोल करता हूँ तो दो गुना आनंद आते। मैं अपन आप लग, मैं भीम समझने लग जाता हूँ कि मैं ही भीम हूँ, कि वो की जोशीला गदा पकड़ के रिंग था, तेकर कारण वही है कि मैं सचमुच में वो समय मैं भीम की रोल नहीं करके मैं खुद भीम हूँ, ऐसे अनुभव लागते।

0: कर सकत रहे हूँ, ओला ऐति तेती बहका सकत रहे हूँ, ओमे अच्छा अच्छा रोचक डाल सकत रहे हूँ, पर वो रोचक डाले में वो चीज नहीं दिखतीस, वो तो बर्बाद हो जातीस ना, फिर नाम कहाँ होतीस। तो ये चीज बचाए के खातिर हमला सब जने जुल मिल के अपन संस्कृति ला अच्छा सजा के रखे मा हमन ला फायदा है, हमारे आने वाले पीढ़ी मन ला फायदा है। सिखाए में जो अनादा थे मैं अब कुछ मुला अच्छा नहीं लगे, कतको लेकर रोते रोवत रोवत गाथे आ तो बोले भूरियारो बोल चुचकारो ये गाडर ही ते गाडर भी बेटा बहुत सुंदर गाले था, बोले बढ़ावा भी दो। तो ये में बड़ा आनंद आते मने गुरु बन के काम करो तो आपके समय में मोला बहुत है अच्छा लागते, लेका मल्ला सिखा के दे दो।
1: तपी करत मैं धुरुला भेटे हूं और नरसिंह ला भेटे हूं खंभा मा, भूईर बिनत सौरी ला भेटे हूं क्योंटल भेटे हूं गंगा मा।
2: और अब स्मरण करते हैं भारतीय रंगमंच की एक महान विभूति विजया मेहता।

0: विजया मेहता आधुनिक भारतीय रंगमंच की उन अग्रणी निर्देशकों में थी जिन्होंने मराठी रंगभूमि को नई सौंदर्य दृष्टि, प्रयोगशीलता और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। उन्होंने शास्त्रीय और आधुनिक रंग भाषा के बीच एक सशक्त सेतु बनाया। अभिनय, निर्देशन, रंग प्रशिक्षण और नाट्य चिंतन, हर क्षेत्र में उनका योगदान उल्लेखनीय रहा। उनके व्यक्तित्व और योगदान पर अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं सुप्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक अमोल पालेकर।
1: विजया जी एक ऐसी अभिनेत्री थी जिसे दिग्गज कहना भी कम होगा। एक छोटी सी बात मैं कह दूं कि विजया जी के बाद जितनी भी अभिनेत्रियां मराठी स्टेज पे आई और बड़ी अच्छी अभिनेत्री, उन सब पे और जिन्होंने विजया जी के साथ काम किया था, उन सब पे विजया जी के अभिनय की छाप इतनी जबरदस्त थी कि ये कौन से स्कूल से आई है ये बताने की जरूरत नहीं रहती थी। मतलब उनके करियर के शुरुआत से आखिर तक उन्होंने एक ऐसी छाप छोड़ दी मराठी रंगमंच पर कि जिसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। रंगायन जैसी संस्था का उन्होंने निर्माण किया और अलग अलग प्रायोगिक नाटक उन्होंने पेश करना शुरू किया। उन्होंने एक अपना प्रेक्षक वर्ग बनाया जो बढ़ते गया। और विजया जी के बारे में एक बात कहना बहुत जरूरी है और समझना, विजया जी ने उनकी शुरुआत प्रायोगिक रंगमंच से की लेकिन वहां से वो मेनस्ट्रीम रंगमंच पर चली गई और मेनस्ट्रीम रंगमंच पर उन्होंने अभिनय भी किया और निर्देशन बहुत ज्यादा किया। सवाल उठाना, अलग किस्म के नाटक पेश करना, नए नए नाटककार पेश करना, ये सारा योगदान विजया जी ने बड़े काबिलियत के साथ किया।
0: भारतीय लोक कला और रंगमंच की ये दोनों विलक्षण साधिकाएं अपने अपने क्षेत्र में सृजन, समर्पण और सांस्कृतिक प्रतिबद्धता की ऐसी विरासत छोड़ गई हैं जो हमेशा हमारा मार्गदर्शन करती रहेगी। भारतीय संस्कृति की शक्ति उसकी निरंतरता में है। प्रकृति के संरक्षण से लेकर लोक आस्था तक, कृषि परंपरा से लेकर सृजनशील कलाकारों की विरासत तक, हर धारा एक ही सांस्कृतिक प्रवाह का विस्तार है। इसी विश्वास के साथ आज की अखिल भारतीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती यहीं संपन्न होती है। नवोदिता मिश्रा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

आकाशवाणी का ही रोहतक केंद्र है। रात्रि के 10 बजने को है। कुछ ही पलों में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे, जिसे हम रिले कर रहे हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: अखिल भारतीय कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है डॉक्टर रामवरपु माधुरी देवी का कर्नाटक शैली में वीणा वादन।
1: दिस इज आकाशवाणी। गुड इवनिंग लिसनर्स, वेलकम टू द नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक। टुनाइट वी प्रेजेंट अ वीणा रिसाइटल इन कर्नाटक स्टाइल बाय डॉक्टर रामवरपु माधुरी देवी।
0: डॉक्टर रामवरपु शरत बाबू और श्रीमती विजयलक्ष्मी की बेटी डॉक्टर आर माधुरी देवी

0: डॉक्टर आर माधुरी देवी की अगली प्रस्तुति है रीति गौड़ राग में संत त्यागराज की रचना नन्नु विड़ची कदलकुरा जो कि त्रिपुट ताल में निबद्ध है.
1: शिनेक्स प्रेजेंट्स अ कॉम्पोजिशन ऑफ सेंट त्यागराजा इन रीति गौड़ रागम त्रिपुट तालम.

0: अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज आप डॉक्टर रामावरपु माधुरी देवी का कर्नाटक शैली में वीणा वादन सुन रहे हैं। आपकी संगत कर रहे हैं मृदंगम पर श्री महादासु येडुकोंडलु और घटम पर श्री मावडूरु सूर्य प्रसाद। कार्यक्रम को जारी रखते हुए डॉक्टर आर माधुरी देवी की अगली प्रस्तुति है कापी राग में वनमालीय जी आर स्वामी की रचना जानकी रमणा, जो की आदि ताल में निबद्ध है।
1: You have been listening to a Veena recital in Carnatic style by Dr. Ramavarapu Madhuri Devi in tonight's national program of music. She is accompanied by Sri Mahadasu Erukondalu on the Mridangam and Sri Mavaduru Surya Prasad on the Ghatam. Continuing her presentation, Dr. Madhuri Devi will now present Janaki Ramana, a composition of Vanamaliya J.R. Swami in Kapi Ragam Aditalam.

0: कन्यावर्तनम, जिसे मृदंगम पर प्रस्तुत किया श्री महादासु येड़ुकोंडलु ने और घटम पर श्री मावडूरु सूर्य प्रसाद ने। डॉक्टर रामवर्पु माधुरी देवी आज के कार्यक्रम का समापन बेहाग राग में डॉक्टर मंगलमपल्ली बालमुरली कृष्णाकृत तिल्लाना से कर रही हैं, जो कि आदि ताल में निबद्ध है।
1: That was Taniyavartanam on the Mridangam by Sri Mahadasu Erukondalu and on the Ghatam by Sri Mavuduru Surya Prasad. Dr. Ramavarapu Madhuri Devi concludes her performance this evening with a Tillana of Dr. Mangalampalli Balamurali Krishna. It is in Behagragam Adithalam.

0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी तक आप डॉक्टर रामवरपु माधुरी देवी का कर्नाटक शैली में वीणा वादन सुन रहे थे। आपकी संगत कर रहे थे मृदंगम पर श्री महादासु येडुकोंडलु और घटम पर श्री मावडूरु सूर्य प्रसाद। इसी के साथ आज का संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम यही सम्पन्न होता है। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के विशाखापट्टनम केंद्र में ध्वन्यांकित किया गया।
1: With this, we come to the end of tonight's national program of music, wherein we brought you a Veena recital in Carnatic style by Dr. Ramavarapu Madhuri Devi. She was accompanied by Sri Mahadasu Erukondalu on the mridangam and Sri Mavuduru Surya Prasad on the ghatam. This program was recorded earlier at the studios of Akashvani Vishakhapatnam.
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। अब से कुछ ही देर बाद यानी ठीक 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे। 11:10 पर समय होगा आपकी फरमाइश कार्यक्रम का। आइए सुनते हैं।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के सामने अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ब्यौरा हमारी विशेष संवाददाता से।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी ऐतिहासिक दो दिवसीय न्यूजीलैंड यात्रा पूरी कर भारत के लिए रवाना हो गए हैं। चार दशकों से अधिक समय बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली द्विपक्षीय यात्रा रही जिसने दोनों देशों के संबंधों को नई गति दी। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच व्यापक वार्ता हुई। दोनों नेताओं की मौजूदगी में रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन तथा डेयरी एवं पशुपालन सहित 5 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री लक्सन ने भारत को न्यूजीलैंड का विश्वसनीय मित्र बताते हुए भारतीय समुदाय के योगदान और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री लक्सन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह यात्रा भारत न्यूजीलैंड संबंधों में नए अध्याय की शुरुआत है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए

0: गोवा में मीडिया से बातचीत में श्री चौधरी ने कहा कि सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करने वाली 41 सदस्यीय समिति सरकारों, राजनीतिक दलों, संवैधानिक विशेषज्ञों, नागरिक समाज और अन्य हितधारकों के विचार जानने के लिए राज्यों का दौरा कर रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के नंदीगामा क्षेत्र में स्थित मेधा रेल कोच कलपुर्जा निर्माण सुविधा स्थल का निरीक्षण किया। 375 एकड़ भूभाग में फैली ये विशाल औद्योगिक इकाई रेलवे के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण प्रगति को प्रदर्शित करती है। अपनी यात्रा के दौरान श्री वैष्णव ने मेक इन इंडिया पहल के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में निजी क्षेत्र के उद्यमों को बढ़ावा देने संबंधी सरकार की वचनबद्धता पर बल दिया। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा लगाए गए उस आरोप की आलोचना की है जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि श्री अब्दुल्ला का ये बयान अत्यंत गैर जिम्मेदाराना है और इसकी निंदा की जानी चाहिए। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट के आज वियतनाम के फु कोक द्वीप के पास पलट जाने से 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि मृतकों में 13 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मृतकों की सूची साझा करते हुए कहा कि ये नाम वियतनामी अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। दूतावास के अनुसार मृतकों में से 10 तमिलनाडु से, 3 आंध्र प्रदेश और 2 केरलम में से थे। नाव में 32 भारतीय पर्यटक, 3 चालक दल के सदस्यों और 1 परिचारक सहित कुल 36 लोग सवार थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नागरिकों के साथ हुई दुखद नाव दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। साउथैम्पटन में खेले जा रहे 5 T20 मैचों की श्रृंखला के अंतिम मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत के सामने 258 रन का लक्ष्य रखा है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 19वें ओवर में 7 विकेट पर 193 रन बना लिए हैं। फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। दूसरे मुकाबले में कल सुबह 6:30 बजे मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अमृत भूषण। Prime Minister Narendra Modi has concluded his historic 2-day visit to New Zealand and departed for India. The visit, the first by an Indian Prime Minister to New Zealand in over 4 decades, gave a major boost to bilateral ties. During the visit, Mr. Modi held talks with his New Zealand counterpart, Christopher Luxon. The two leaders witnessed the exchange of 5 memoranda of understanding in areas including defence, tourism, sports, disaster management and dairy and animal husbandry. A major highlight of the visit was the community event at Auckland's Spark Arena, attended by over 10,000 members of the Indian diaspora. Prime Minister Modi thanked Prime Minister Luxon for his warm hospitality and said the visit had opened a new chapter in India-New Zealand relations. Referring to the 40-year gap since the last visit by an Indian Prime Minister, he said the next visit would not take so long. Defence Minister Rajnath Singh today said that India is building a strong, self-reliant and future-ready defence force by strengthening both conventional defence capabilities and advanced technologies. Mr. Rajnath Singh said this while addressing the commissioning ceremony of the INS Mahindragiri, the 6th Project 17A Indigenous Stealth Frigate, into the Eastern Fleet at Visakhapatnam. He said the commissioning marks another milestone in strengthening India's maritime power and indigenous defence capability. 15 Indian tourists were killed after a boat capsized near Vietnam's Phu Quoc Island today. The Embassy of India in Vietnam confirmed that the deceased include 13 men and 2 women. According to the embassy, 10 of the deceased were from Tamil Nadu, 3 from Andhra Pradesh and 2 from Kerala. The boat was carrying 36 people, including 32 Indian tourists, 3 crew members and 1 attendant. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra